बलदि वाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती समरका गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाउ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जैस डिठे सब दुख जाए तेक बहादुर सिमरिया घर नौ निधि आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे पंजा प्यारिया सोहा साहिबजादिया चालिया मुकतिया हठिया जापिया तापिया जिना नाम जपिया वंड छगया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगरिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सां स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी।

चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमानिया दे मान

0: पौड़ी सतगुरु विट होवारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजा लगे डुबे सेवन जारिया सतगुरु है बोध था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
1: किस, किस, किस, किस, किस।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉ. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय

0: नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रोक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, एनसी सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से 1 जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स आप राही भी सुन सकते हो। ज्ञान अमृत।

हुने तुसी सुनिया ज्ञान अमृत। आओ हुन सर्वन करते हैं भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना।

दिन दी शुरुआत च जेकर इस निरंकार दा नाम होवे, दिल च इस दा वास होवे, ता फिर दिन दी शुरुआत होर भी सोहनी, होर भी सकून ना पड़ जाती है।

दिन की शुरुआत जदों रब के नाम नाल होवे तां मन नूं एक वखरा ही सकून मिलता है। कहिंदे ने इंसान की पहचान सिर्फ उसकी बोलना या उसकी शकल तो नहीं होंदी, उसकी पहचान तां उसके गुणा

0: हुने तुसी सर्वन कर रहे सी भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही तो न्यूज ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकते हो। इस वेले साढ़े स्टूडियोज की कड़ी मुताबक 6:03 हो रहे हैं। हुण तुसी सुनोगे प्रोग्राम खेतीबाड़ी।
1: खेतीबाड़ी

भरत का दल बल समेत और विशेषकर चतुरंगिनी सेना के साथ पर्णकुटी आने का समाचार सुन लक्ष्मण का क्रोध जाग उठा था और उन्होंने भरत का वध करने की सौगंध ले ली। तभी आकाशवाणी हुई कि कोई भी काम उचित अनुचित जानकर तथा खूब सोच समझ कर करना चाहिए। देववाणी सुनकर लक्ष्मण सकुचा गए। श्री राम ने तब उन्हें समझाया कि भरत सरीखा श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया न ही देखा गया। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश भले ही बादलों में सिमट जाए, गोखुर जितने जल में अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता छोड़ दे, किंतु भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। श्रीराम के वचन सुनकर देवलोक में उनकी जय जयकार होने लगी। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता।

मानस गान प्रोग्राम च तुसी सर्वन कर रहे सी रामचरित मानस दी लड़ीवार पाठ दी 209वीं कड़ी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडी प्रोग्राम वेव्स आप राही ते न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकते हो। परिचय

आओ हुन तुहानू जानकारी दे दिए आज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम दी। सवेरे 7:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम सोनी सवेर, 8:40 ते तुसी तरसे मसीह ते साथियां दे गाए मसीही भजन सरवण करोगे। शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना तुसी सुनोगे सवेरे 9:02 ते इस अज तुसी कलाकार पंडित हुसन लाल पासों शास्त्रीय गायन राग भैरव बहार सुनोगे। सवेरे 9:30 समा रहेगा प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान का। इस प्रोग्राम के तहत तुसी अज वर्ल्ड डेफ डे नदी दिवस ते दित्ती जानकारी सुनोगे ते नाल ही दिल दे मरीजां लई सही पोषण ते वार्ता सुनोगे ते वार्ताकार होंगे डॉक्टर श्रुति जैन। सवेरे 10:02 ते तुसी साडा लाइव फोन इन प्रोग्राम सुनोगे हलो फरमाइश। 11:00 तुसी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों लई प्रसारण मन की बात साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे। 12:05 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम बाल जगत। इस दौरान दोपहर 1:15 फौजी वरली प्रोग्राम पेश किया जाएगा। बाद दोपहर 2:30 तुसी सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। इस अज तुसी कवि श्री मुखिया तीर सिंह चफल टाटी ते साथियों दे लोक गीत सुनोगे। शाम 4:02 ते समा रहेगा अंग्रेजी पत्रिका स्पेक्ट्रम दा। शाम 4:30 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 सरवण करोगे गुरुवाणी विचार। देहाती प्रोग्राम होगा शाम 6:30। इस अज सैर सपाटा विषय ते वार्ता तुसी सुनोगे। वार्ताकार होंगे डॉक्टर रंजीत सिंह। इस दौरान इस प्रोग्राम अज तुसी मटरां दी सफल काश्त विषय ते जानकारी सुनोगे। इस विषय ते जानकारी देंगे डॉक्टर हीरा सिंह।

उस बाद शाम 7:45 ते सुनोगे कहानी वग दे पानी। शाम 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे देशवासियों लई प्रसारण मन की बात दा पंजाबी रूपांतरण मुड़ प्रसारण तुसी सुनोगे। शाम 8:40 ते तुसी सुनोगे पंजाबी गीत। रात 9 बजे तुसी सुनोगे न्यूज 8:09। 9:15 बजे तुसी सुनोगे स्पॉटलाइट। ए दोनों प्रोग्राम साडे दिल्ली केंद्र तो प्रसारित किते जाणगे। रात 10:20 ते समा रहेगा शास्त्रीय संगीत प्रोग्राम दा। इस प्रोग्राम च आज तुसी कलाकार पंडित अजय जय चक्रवर्ती पासों शास्त्रीय गायन सुनोगे राग काफी ते ठुमरी सुनोगे। ऐसी आज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वीरवा मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 854 किलोहर्ट्स, FM 100.8 MHz, FM 100.9 MHz अति DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुन तो बस कुछ ही पलां च तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे संस्कृत च समाचार।

0: तेषां गृहे सुगच्छन्ति ये वर्तमानस्य विशेष गहन संशोधनस्य SIR इत्यस्य समये सूचनाः प्रदत्तवन्तः तेषां आवश्यक पत्राणि संग्रहीतुम्। तदनन्तरं BLO इत्येते ECI नेट इत्याख्ये पटले प्रलेखान् प्रेषयिष्यन्ति। भारतं सर्वान् पक्षान् संयमम् आचरितुं कष्टं न्यूनीकर्तुं नागरिकान् रक्षणं सुनिश्चेतुं वर्तमानयुद्धेषु ऊर्जायाः वाणिज्यस्य अविरामप्रवाहं च सुनिश्चेतुम् आहूतवान्। गतरात्रौ न्यूयॉर्कनगरे संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सामान्यसभां सम्बोधयन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् युद्धानां परिणामाः प्रत्यक्षतया युद्धे संलग्नराष्ट्राणां समीपेभ्यः बहुदूरं यावत् अनुभूताः भवन्ति। सः अवदत् यत् वैमनस्येन वैश्विकसुरक्षा निरन्तरं प्रभाविता भवति, प्रगतिः संकिता भवति तथा च तस्य समीपस्थ प्रदेशेभ्यः बहुदूरं यावत् विकासः मन्दः भवति। सः अवदत् यत् विशेषतः खाद्य ऊर्जा सुरक्षादि क्षेत्रेषु स्थितिं परिष्कारयितुं भारतं सर्वविध साहाय्यं कर्तुं तत्परः अस्ति। वित्तमन्त्रालयः अघोषयत् यत् ग्राहकेभ्यः सौलभ्यं प्रदातुम् अद्य सर्वे सार्वजनिकक्षेत्रस्य बैंक संस्थाः ग्रामीण बैंक संस्थाः च उद्घाटिताः भवन्ति। मन्त्रालयः अवदत् यत् यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इत्यनेन अस्मिन् मासे 28 30 दिनांक पर्यन्तम् आहूताः प्रस्तावित त्रिदिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक प्रदर्शनस्य दृष्ट्या एतत् निर्णयः स्वीकृतः। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मध्ये तिसृणां क्रीडा श्रृंखलायाः प्रथम एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडा अद्य तिरुवनन्तपुरम नगरस्य ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडांगणे भविष्यति। क्रीडा अपराह्ने 2 आरभ्यते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडे स्टूडियोज दी कड़ी मुताबक सवेर दे 7 बज रहे ने। हुन पेश ने अज दियां मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत दे निर्माण विच सारियां नू नौजवानां दी अहम भूमिका नू अगे वधाउणा चाहिदा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमणी ने रक्षा सिलसिले विच टेक्नोलॉजी डेटा अते सनअत ए एकीकरण ते जोर दिता है। सरकार ने घरेलू खुराकी तेलां दीआं कीमतां नू कंट्रोल करन लई दरामद कीते जांदे प्रमुख खुराकी कच्चे तेलां ते मुडली कस्टम ड्यूटी घटा दिती है। पंजाब दे खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने हाड़ी दियां फसलां संबंधी तैयारियां दा लिया जायजा। खादां दी निगरान ते समय सिर सप्लाई यकीनी बनाउण लई अधिकारियां नूं दित्ते निर्देश। पंजाब गऊ सेवा कमिशन दे उप चेयरमैन कीमती भगत ने कहा है सरकार गऊ धन दी सम संभाल सुरक्षा अते गऊशाला नूं बेहतर सहूलतां मुहैया करवाउण लई लगातार यतनशील है। पंजाब सरकार ने विधवा अते बेसहारा औरतां नूं दित्ती वित्तीय सहायता योजना तहत मौजूदा वित्तीय साल 2026-27 दौरान करीब 624 करोड़ रुपए जारी किए। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग दे एक मामले विच मोहाली लुधियाना चंडीगढ़ पंचकुला अते दिल्ली विच 26 थावां ते छापेमारी की। खजाना मंत्रालय ने ऐलान किया है कि गाहकों की सहूलत लई सारे जनतक खेत्र दे बैंक अते खेतरी दहाकी देहाती बैंक एतवार 27 सितंबर खुले रहेंगे। श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पूरब नूं समर्पित सजानपुर विच ड्रोन शो करवाया गया। खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना के कृषि विज्ञान केंद्र बठिंडा विखे पराली प्रबंधन संबंधी किसान मेला अते किसान संवाद करवाया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर विच मनुखी अधिकारां दी उल्लंघना दा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मनुखी अधिकार कौंसल दे 3वें सेशन विच उठाया गया। एशियाई खेडां विच सीमा कुमारी ने औरतां दी 10,000 मीटर दौड़ दे फाइनल विच कांसी दा तमगा जित्तिया। भारत दी मर्दां ते औरतां दी कबड्डी टीमां

वाह जी वाह, सतिंदर सरताज ने ते प्रोग्राम सोनी सवेर च सानू किन्ने शहरां च घुमा दिता। ते आई होप कि तुसी भी सवेरे सवेरे हुण फ्रेश हो गए होवोगे एकदम, कि बिल्कुल किन्ने सारे शहरां च असी इस गीत दे राहीं जिहड़ा है ओह असी घूम लिया जी। ते हुण असी गीत भी इंजॉय कर ले, तुहानू जानकारी भी दे दित्ती, पर एक जानकारी होर इंपोर्टेंट है जी तुहाडे नाल। अज दा जिहड़ा दिन है ना, ओह एक होर खास दिन वजों मनाया जा रहा है। अज जी विश्व बहरा दिवस यानी कि वर्ल्ड डेफ डे वजो अज का जो दिन है 27 सितंबर का मनाया जा रहा है। तो हर साल जो लास्ट संडे ऑफ सितंबर महीने का वो मनाया जाता है वर्ल्ड डेफ डे। तो हम तुम सोचोगे कि यह दिन मनाने की लोड़ क्यों पई? तो जी इस दिन का जो मकसद है वह लोगों को बहरेपन सुनने में मुश्किल का सामना कर रहे लोगों की जिंदगी बारे ना अवेयर करना है, जागरूक करना है, उन्होंने हकों बारे गल करनी है। तो यह समझाना है कि सुनने में मुश्किल होना किसी इंसान की काबिलियत को घट नहीं करता। साढ़े आले दुआले अजे बहुत सारे लोग ने जो आवाज़ा नहीं सुन सकते या फिर घट सुनते हैं, पर जेकर जो गल करते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं, अपने सुपने पूरे करते हैं, वह भी असं वेखने ना, बस उन्होंने गलबात करन दे जिहड़े तरीके ने वो साडे नालों वखरे ने। इत्थे आंदे ने इशारियां दी भाषा, साइन लैंग्वेज, हाथों के इशारे हो गए, चेहरे के हाव भाव, शरीर दियां हरकतां राहीं जिहड़ी गलबात करना है ना, वह भी एक तरीका है जी। तो सब तो खास गल है कि यह सिर्फ इशारे नहीं सगों अपनी बनतर अते नियमां वाली एक उन्हां दी भाषा है। इसलिए सानू यह याद जिहड़ा करवाया जाता है इस दिन के राही जो सैलीब्रेट किया जाता है कि सिक्ख्या, नौकरी, राज, सरकारी सहूलत या रोज़ाना जिंदगी दे विच कोई भी थां होवे हर इंसान लई पहुँच आसान होनी चाहिए है। मिसाल के तौर पर जो किसी जरूरी जानकारी के नाल इशारे की भाषा या लिखती जानकारी भी उपलब्ध होवे तो सुनने विच मुश्किल होने वाले लोगों लिए चीज़ काफ़ी जी ना आसान हो सकती ने। तो जी इस दिन का एक सोहना संदेश यह भी है कि बराबरी का मतलब सारियां इको जिहा बनाउणा नहीं हुंदा, सगो हर किसी नू अगे वधन का बराबर मौका देना है। ता जी जदों असी विश्व बहरा दिवस यानी कि वर्ल्ड डेफ डे मना रहे हैं तो आओ फिर एक छोटी जी

कोशिश करिए जो साढ़े आले दुआले कोई अजे व्यक्ति ने जो सुन नहीं सकते या फिर घट सुनते हैं तो उस नाल असी गल करन विच बिल्कुल ना असी झिझकचाइए सगों लोड़ पवे तो लिख के गल कर लो इशारिया की मदद ले लो पर सब तो जरूरी गल उसनू अपने तो वखरा समझ के दूर ना करो क्योंकि हर इंसान नू सुनिया जाना चाहिए भावें उसकी आवाज़ सानू सुनाई देवे या ना देवे। चलो जी इसी सोहने संदेश दे नाल प्रोग्राम सोहनी सवेर च वधदे आगे तो कुमार सानू ते अलका याग्निक की आवाज़ च सुनते हैं सोना चाहिए।

मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपनी मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करनगे नालों नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी।

प्रोग्राम सोनी सवेर तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रोग्राम प्रसारित किया जा रहा है। तो इस प्रोग्राम च मैं तुहाडी दोस्त शुभता हाँ जी तुहाडे नाल ते बिल्कुल जी असी सोहणे सोहणे गीत इंजॉय कर रहे सी प्रोग्राम च ते नाल दे नाल गल कर रहे सी कि अज दा जिहड़ा दिन है 27 सितंबर वह खास दिन वजो जिहड़ा है वह मनाया जा रहा है। असी गल की वर्ल्ड टूरिज्म डे की वर्ल्ड डिफ डे की तो एक होर खास दिन वजो अज का जिहड़ा दिन है ना वह मनाया जा रहा है वो जी वर्ल्ड रिवर डे। कुदरत ने सानू बहुत कुछ दिता है हरे भरे जंगल पहाड़ हवा पानी ते इना सब विच ना दरियावां दी अपनी एक खास थां है। अज मनाया जा रहा है जी विश्व दरिया दिवस जिसनों असी अंग्रेजी च वर्ल्ड रिवर डे भी कहने हैं। इस दिन ना हर साल सितंबर महीने के चौथे एतवार को मनाया जाता है। इस दिन का जिहड़ा मकसद है वह दुनिया भर के दरियावां की इंपोर्टेंस बारे लोगों को अवेयर करना है तो इन्हां दी संभाल लई सानू अपनी जिम्मेवारी याद करवाना है। हुण जरा सोचो कि दरिया सिर्फ वगदा होया पानी नहीं हुंदा साड़ी जिंदगी विच ना दरियावां दा बहुत वड्डा योगदान है। पीण वाला पानी खेतीबाड़ी जंगली जीवन मच्छियां जैव विभिन्नता इत्थों तक कि कई शहरां ते पिंडां दीआं कहानियां जिहड़ियां ने ना वह भी दरियावां दे कंढियां नाल जुड़ियां हुई ने। तो जेकर असीं अपने पंजाब की गल करिए दरियावां नाल साडा रिश्ता तो होर भी डूंघा है। साड़ी धरती साड़ी खेती साड़ा इतिहास ते साड़ी सभ्याचारक विरासत इन्हां सब विच दरियावां दी छाप वेखण नूं मिलदी है। पर अज दरियावां सामने कई वड्डे चुनौतियां ने जी कई वड्डे चैलेंजेस ने। पानी दा प्रदूषण प्लास्टिक ते कूड़ा गंदे पानी दी निकासी दरियावां दी कुदरती वहाव विच ना तब्दीलियां ते लगातार वधदा पानी दा दबाव ते इसलिए ना विश्व दरिया दिवस सिर्फ दरियावां दी गल करन दा नहीं दरियावां लई कुछ करन दा सुनेहा भी दिंदा है। असीं अपने पद्धर ते छोटियां छोटियां जिहड़ियां कोशिशां ना वह कर सकते हैं जी। दरियावां ते पानी दे स्रोतां विच कूड़ा ना सुटना प्लास्टिक दी वरतों घटाउणा पानी दी बर्बादी रोकना अते अपने आले दुआले ना पानी दे स्रोतां नूं साफ रखण विच असीं योगदान पा सकते हैं क्योंकि दरिया सिर्फ अज लई नहीं हुंदे इह आउण वाली जिहड़ी साडी जनरेशन्स ने जिहड़ी पीढ़ियां ने उहनां लई भी विरासत ने। तां जी अज विश्व दरिया दिवस दे एक छोटा जिहा वादा जिहड़ा ना अपने आप नाल कर लो पानी की कदर असी करांगे दरियावां नूं गंदा नहीं करांगे अते कुदरत नाल अपना रिश्ता होर मजबूत करांगे क्योंकि कहिंदे ने जिथे दरिया वगदे ने ना उथे सिर्फ पानी नहीं वगदा उथे जिंदगी वगदी है इतिहास वगदा है ते साडियां आउण वालियां पीढ़ियां दा भविख भी वगदा है। तो चलो जी इसी संदेश दे नाल मुड़दे हाँ फिर संगीत दे सफर वल ते सुनदे हाँ आतिफ असलम ते तुलसी कुमार की आवाज से सोना जगी तो उस तो बाद में फिर वापस आवेंगे तो होर कुछ जानकारी शेयर करांगे।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ। 8:15 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
3: A persistent threat to peace.
4: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
2: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन

0: की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
1: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
5: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP

0: में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
3: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्टबोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
1: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है। पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को

0: दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है, नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं यात्रा। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य के नजरिए से एक शोध प्रकाशित किया है, चाय के साथ रोज 100 ग्राम नमकीन बना सकती है बीमार। पैकेज चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे फ्लेवर ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट में कैलोरी ज्यादा है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कॉल्स अपॉन ऑल वॉरिंग नेशंस टू डी एस्केलेट टेंशंस एंड कीप एनर्जी एंड ट्रेड रूट्स ओपन ड्यूरिंग ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स। Russia strongly backs India's claim for permanent seat in UN Security Council. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. All public sector banks and regional rural banks to remain open today for convenience of customers. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Uttarakhand. Char Dham Yatra suspended in view of adverse weather conditions. And in men's cricket, first one-day international of three-match series between India and West Indies to be played in Thiruvananthapuram this afternoon. And now the news in detail. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce during ongoing conflicts. Addressing the UN General Assembly in New York last night, External Affairs Minister S. Jayashankar pointed out that the repercussions of wars are experienced far outside the borders of directly engaged nations. He said, hostilities continue to destabilize global security, threatening progress and slowing development far beyond their immediate regions. Dr. Jayashankar said India is prepared to do everything possible to help improve the situation, particularly in areas of food and energy security.
3: We remain deeply concerned over continuing hostilities, the targeting of commercial shipping and seafarers transiting international waterways is simply unacceptable. India calls upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce.
2: Referring to the protracted Russia-Ukraine conflict, the minister said, The ongoing war remains a critical international concern and echoed Prime Minister Narendra Modi's call for an end to hostilities. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has strongly backed India's claim for a permanent seat in the United Nations Security Council. In his address at the UN General Assembly in New York last night, Mr. Lavrov said, Russia, in favor of broadening the representation of Asia, Africa and Latin America and Moscow, supports India's and Brazil's candidatures for a permanent seat. He advocated for more seat allocation to the Global South and voiced strong support for India and Brazil. Mr. Lavrov said UN Security Council reforms cannot involve any additional seats being allocated to Western countries, especially to Germany and Japan, who are now on the path to militarism and revanchism. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. today. This will be the 138th episode. The program will be

साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपनी मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं

0: हुने तुसी सुन रहे सी शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना। इस तुसी कलाकार पंडित हुसन लाल पासू शास्त्रीय गायन राग भैरव बहार सुनिया। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स दे ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियोज दे घड़ी मुताबक सवेर दे 9:30 हो रहे ने। हुण पेश है प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान।
1: ज्ञान विज्ञान

0: योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड आफ आफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार नहीं है। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडे स्टूडियोज़ दी घड़ी मुताबक सवेर दे 10 बज रहे ने। हुण पेश ने अज दीआं मुख खबरां। विदेश मंत्री डॉ एस जय शंकर ने संघर्ष विचले सारे देशों नूं तनाव घटाण अते चल रहे टकरावां दौरान ऊर्जा अते व्यापारक राह खुले रखण दा सद्दा दित्ता है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल विच स्थाई सीट लई भारत दे दावे दी जोरदार हमायत कीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते अपने मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश दे लोकां नाल अपने विचार सांझा करेंगे। गाहकां दी सहूलत लई अज सारे जनतक खेतर दे बैंक अते खेतरी देहाती बैंक खुले रहेंगे। पंजाब भर विच भारतीय जनता पार्टी वल्लों नशा मुक्त पंजाब यात्रा दा सिलसिला जारी है। राज्यसभा संसद मैंबर डॉ विक्रमजीत सिंह साणी ने अमृतसर दे स्वामी विवेकानंद नशा मुड़ विसेबा केंद्र दा दौरा कीता। नशे दी स्थिति नूं लेके चिंता प्रगटाई। राज्यसभा मैंबर संत बलवीर सिंह सीचेवाल ने मापिया नूं अपने बच्चियां नूं पानी वालियां कायाकिंग अते नोइंग वर्गियां खेडां नाल जोड़न दा सद्दा दित्ता है। उत्तराखंड च बेहद ज्यादा बारिश दा रेड अलर्ट। खराब मौसम दरमियान 4 धाम यात्रा मुलतव। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ दे वख-वख हिस्सियां विच तेज हवावां चलन अते गरज चमक नाल भारी मीह पैण संबंधी येलो अलर्ट जारी कीता है। अते भारत अते वेस्ट इंडीज दरमियान 3 एक रोजा क्रिकेट मैचां दी लड़ी अज तों शुरू हो रही है। पहला मैच अज दोपहर बाद 2 बजे तिरुवंतरापुरम विच खेडिया जावेगा। एसन अज दीआं मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। साड़ी अगली घोषणा दा इंतजार करो।
1: स्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: खेडां नूं उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा शानदार उपराला प्रोग्राम खेड संसार। गिरगिट वांग रंग बदलदी क्रिकेट दे भेद दसदा, हॉकी दी चलाकी दियां रमज़ां बयान करदा, खिडारियां दा जनून, मैदानां दा रोमांच, मैदानां च जित दी खुशी ते हार तों सबक लैण दी दिलचस्प कहानी तुहानूं सुणाउंदा प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिया जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई

बाद एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करनगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर FM 102.7 मेगाहर्ट्ज DTH दी AIR पंजाबी सेवा DRM 864 किलोहर्ट्ज FM 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती FM 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर FM 100.9 मेगाहर्ट्ज ते FM 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडे स्टूडियोज़ दी कड़ी मुताबक स्पीड दे 10:06 हो रहे ने ते हुण पेश करन जा रहे हां प्रोग्राम हलो फरमाइश। साडे लाइव फोन इन इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकदे हो। दिल तुसी नंबर डायल करना है 0181 3342 173। इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत करो ते अपने मन पसंदीदा गीत सुनो। इस प्रोग्राम च मैं तुहाडी दोस्त शुभता जी तुहाडे नाल। तुसी फिलहाल साडे तक पहुंचन दी कोशिश करो। इस नाल ही सब तो पहला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म कलंक चो अरिजीत सिंह ते नीति मोहन की आवाज़।

0: मोहम्मद रफी ते आशा भोसले दी आवाज़ च तुसी सुन रहे सी जी बहुत सोहना जिहा गीत आओ जानदे आ प्रोग्राम च हुण अगली फरमाइश कौन लेके आए ने हैलो
1: हैलो सत श्री अकाल मैडम जी
0: सत श्री अकाल जी हां जी कौन बोल रहे ने जी
1: मैं जी कपूर चंद्र जोरा श्री गंगसर साहिब जैतों मंडी फरीदकोट तों बोल रहे जी
0: बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च तुहाडा
1: शुक्रिया मैडम जी
0: हां जी किन्ने दिनां बाद कॉल लगी तुहाडी
1: मैडम जी पुछो ना जी दिमाग खराब हो गया लाला के कपड़े मिले हो गए जी
0: अच्छा जी
1: हां जी
0: फिर आज तुहाडी जिहड़ी कॉल लग गई है ते आज संडे दा दिन बेशक तुसी फुर्सत ना पता नहीं बता रहे होवोगे कि नहीं पर कॉल लगी फिर खुशी है तुहानू
1: हां जी मैडम बहुत खुशी है जी
0: काम काज की करते हो तुसी फरमाइश बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई धन्यवाद लो जी इन्हां दी फरमाइश असीं पूरी करन जा रहे हैं ते तुहाडी वी फरमाइश असीं पूरी करनी है उहदे लई नंबर डायल करना है तुसीं प्रोग्राम च शिरकत करन लई 0182 43 173 नंबर डायल करो प्रोग्राम च शिरकत करो ते अपने मनपसंदीदा गीत सुनो

0: लता मंगेशकर ते मोहम्मद रफी साहब की आवाज च तुसी गीत इंजॉय कर रहे सी फिल्म हाथ की सफाई चो। आओ जानते हैं अगली फरमाइश कौन लेके आए ने। हेलो हाँ जी नमस्कार जी सत्रीकाल जी। हाँ जी कौन बोल रहे ने जी? बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा प्रोग्राम च। ठीक है जी थोड़ी जी तक फीडबैक पहुंचे ठीक है जी ठीक है जी।
1: आज तुसी केड़ी आवाज नहीं आ रही ते अपन रेडियो दा आसरा लेके गल कर रहे हैं सबका मान।
0: ठीक है जी आज तुसी केड़ी फरमाइश लेके आए हो केड़ा गीत सुनना है?
1: मैं गाना आज लावे जी कही दिल को भी दा गाने दे बोला जी मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए नहीं जाने कहां दिल को गया।
0: ठीक है जी जरूर पूरी कर दे फरमाइश तुहाडी बहुत-बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए
1: धन्यवाद जी।

0: प्रोग्राम हलो फरमाइश असी इसी तरह तुहाडी जिहड़ी फरमाइशां ने असी उन्हां नूं पूरे करदे रहांगे, लेकिन हुण मिला है जी एक छोटे जिहे अंतराल दा। मिलदे हां एक छोटे जिहे अंतराल तों बाद।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानन लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स ते FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स ते। इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

0: क्लेम करना मुश्किल होवेगा।
1: हुण होर भी आसान हो गया है। बैंक दी वेबसाइट जा शाखा ते जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, दस्तावेज जमा करो, 15 दिनां च रकम प्राप्त करो, अते नॉमिनी नाल क्लेम दा निपटारा होवे होर भी आसान।
2: आरबीआई कहिंदा है,
1: जानकार बनो, सचेत रहो।
3: प्रोग्राम हलू फरमाइश आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम च मैं तुहाडी दोस्त शुभता जी तुहाडे नाल, आओ जानदे हां प्रोग्राम च अगली फरमाइश कौन लेके आए ने। हेलो
4: हेलो मैडम नमस्कार।
3: नमस्कार जी, हां जी कौन बोल रहे ने जी?
4: सुखबीर सिंह छाजली बोलदा मैम संगरूर तो।
3: बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम च तुहाडा।
4: शुक्रिया मैडम जी, बहुत वधिया प्रोग्राम पेश करदे हो जिद्दे भी तुसीं आउंदे हो।
3: बहुत बहुत शुक्रिया जी। किन्ने दिनां बाद कॉल मिली है तुहाडी?
4: मोहब्बत की नहीं जाती ये गाना ला दो जी।
3: ठीक है जी, जरूर पूरी कर दें तुहाडी फरमाइश। उदित नारायण दी आवाज़।
4: ठीक है जी, ओके।

0: साधना सरगम दी आवाज च तुसी एंजॉय कर रहे सी बहुत सोहना जिहा गीत ते प्रोग्राम हलो फरमाइश। अगली फरमाइश कौन लेके आए ने आओ जानते हैं। हलो
1: हेलो नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी, हाँ जी कौन बोल रहे हैं जी?
1: मैं विजय कुमार जत्ता मंडी तो बोल रहे हैं खटक जिला फरीदकोट तो।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा
1: मैडम। सुन रहे हैं बहुत बहुत स्वागत मैडम।
0: हाँ जी, आज फिर थोड़ी कॉल मिली है, कितने दिन बाद मिली
1: मैडम? हो गए 30-35 दिन हो गए।
0: अच्छा जी, केड़ा गीत सुनना है, फरमाइश की है थोड़ी?
1: अपना बताप फिल्म का गाना जी, कोई सुना दो बताप फिल्म का।
0: चलो ठीक है जी, जरूर पूरी कर दें थोड़ी फरमाइश, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए।
1: थैंक यू।

मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपने मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करनगे नालों नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी।

0: प्रोग्राम हलो फरमाइश आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है। आओ जानते हैं प्रोग्राम च अगली फरमाइश कौन लेके आए ने। हलो सत श्री अकाल जी। हाँ जी कौन बोल रहे ने जी?
1: मैं जादी कह रहा हूँ पिंड कलारा जी नाभा जरा पचाड़ से बोल रहा जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ जी केड़ा गीत सुनोगे जी अज? हाँ जी केड़ा गीत सुनोगे जी?
1: फिर मैं जी सी आई डी संगीतकार मजरू सुल्तानपुरी संगीतकार ओपी नैयर वाजा ने आशा मुंसरे शमशाद बेगम ते मम रवी साहब दिया और लेके पहला पहला प्यार मर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार।
0: ठीक है जी जरूर पूरी कर दे तुम्हारी फरमाइश। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के।

0: ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक कितना ब्लॉक करूं यार
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता हर बार नया नंबर आ जाता है
4: तो क्या करूं
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट बस कुछ सेकंड्स का काम
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा
5: हाँ रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए अब कितनी बातें भूल गया हूँ तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है
7: कहाँ से पता चलेगा
6: उद्गम से RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ
4: आज ही सर्च करूंगा
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए सतर्क रहिए
10: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहाँ आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं है मदद बस एक कॉल दूर है
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
12: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार

मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था, उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था। और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने

मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न

केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास
इस भावना को

बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध, ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है। एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए

गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पॉटिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा

घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए, वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहाँ हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी

0: को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: हुणे तुसी माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दा देशवासियां लई प्रसारण मन की बात सुन रहे सी। साडे अगले ऐलान दा इंतजार करो। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, एफएम 102.7 मेगा हर्ट्स, डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा, डीआरएम 864 किलो हर्ट्स, 100.6 मेगा हर्ट्स विविध भारती, 103.6 मेगा हर्ट्स अमृतसर, 100.9 मेगा हर्ट्स अते 100.8 मेगा हर्ट्स ते यह आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण तो थोड़ी देर बाद माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे देशवासियां लई प्रसारण मन की बात दा पंजाबी रूपांतर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी दे बठिंडा, चंडीगढ़, लुधियाना ते पटियाला केंद्र भी ए प्रसारण नालो नाल करनगे।
4: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मैनू सितंबर महीने विच एक बार फिर मन की बात विच तुहाडे नाल मुलाकात करन दा मौका मिल रहा है। मैं देश दे सारे लोकां दा स्वागत करता। मन की बात विच असी देशवासियों दे सकारात्मक यतना नू एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। असी देश दीयां प्राप्तियां बारे गल करते हैं। भारत दी एक अजई वड्डी इतिहासिक प्राप्ति दे एक दिन बाद 10 साल पूरे होण जा रहे ने। ये प्राप्ति सर्जिकल स्ट्राइक दी है। 10 साल पहला 28-29 सितंबर 2016 नू भारतीय फौज ने पाकिस्तान विच अतवादी कैंपां ते सर्जिकल स्ट्राइक कीती सी। LOC तो पार जाके साडे बहादुर सैनिकां दे अतवाद विरुद्ध कार्रवाई करन दे तरीके नूं देख के दुनिया हैरान रह गई। सर्जिकल स्ट्राइक ने पूरी दुनिया दे सामने भारत दी अतवाद विरोध नीति दी एक नवी उदाहरण दलेरी नाल पेश कीती। सर्जिकल स्ट्राइक उस दर्द प्रति साडा फैसलाकुन जवाब सी जो भारत लंबे समय तो अतवादी हमलों के कारण चल रहा सी। पिछले दहाके विच बालाकोट एयर स्ट्राइक तो लैके ऑपरेशन संदूर तक भारत ने वार वार स्पष्ट संदेश दिता है कि जेकर अतवादियों ने भारत ते बुरी नज़र रखी तो उन्होंने ढुकवां जवाब दिता जाएगा। दोस्तों अतवादी हमलों ने लंबे समय तो भारत को नुकसान पहुँचाया। एक समा सी जदों भारत विच सीरियल ब्लास्ट होना आम गल हो गई सी। सितंबर दे इस महीने विच यानी 13 सितंबर 2008 नू दिल्ली विच लड़ीवार धमाके होए, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। कुछ हफ्तियां बाद ही मुंबई विच 26/11 दा वड्डा हमला होया। दोस्तों पहला भी हर अतवादी हमले तो बाद पाकिस्तान विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जाती सी, पर इस वल ज्यादा ध्यान नहीं दिता जांदा सी, समय का इंतजार किया जांदा सी। हुण अज दे भारत की अतवाद विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति है, वो इसनू अगे वधा रहा है ते असी इस दे नतीजे भी वेख रहे हैं। दोस्तों इस साल 9/11 दे अतवादी हमलों नू भी 25 साल हो रहे हैं।

0: जय हिंद। कदे उदासी आवे मन ते बच्चे कर दे दूर, गोदी दे विच आके बैठन सब गम चकना चूर। ते इना प्यारे प्यारे होन हार बच्चों का मनपसंद प्रोग्राम लैके उन्हां दे रेडियो सैट उपर हाजिर हो चुके ने जी सुखदीप और हरप्रीत। और एतवार की इस खूबसूरत जी दोपहर नूं होर ज़्यादा खूबसूरत बनाउण की कोशिश करांगे मनोरंजन जानकारी प्यारे बच्चों दी हाजरियां दे नाल और होर भी बहुत सारियां जानकारियां दे नाल।
1: प्रोग्राम शुरू हो चुका है बाल जगत। बाल जगत मतलब थोड़ा अपना दिन।

0: लो जी प्यारे बच्चे, याद रखते ने कि 28 सितंबर का जिहड़ा दिन है वह शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। और इस दिन उस शूरवीर का जन्म होया सी 28 सितंबर नूं, जिन्हें आज़ादी संग्राम दे विच एक नवी चिणग पा दित्ती और हिंद वासियां नूं अपनी कुरबानी दे नाल आज़ादी दवा दित्ती। और प्यारे बच्चिओ, तुसी भगत सिंह बारे बहुत कुछ जानते हो अपने सिलेबस के राही। और प्यारे बच्चिओ, तुहानू ए वी जान के खुशी होएगी कि सरदार भगत सिंह नूं किताबां दे नाल बहुत मोह सी। सरदार भगत सिंह किताबां दे आशिक सी, हमेशा किताबां पढ़दे सी, और ए आज़ादी दी चिणग भी उहनां नूं किताबां तों मिली सी, उहनां दे घर तों मिली सी। सो प्यारे बच्चिओ, ये जिहड़ियां किताबां ने साडे विच जागृति लियाउंदियां ने, साडी सोच नूं रोशन करदियां ने, और रोशन सोच वाले इंसान अपने देश नूं, अपनी कौम नूं, अपने समाज नूं तरक्की दियां नवियां राहां वल लैके जांदे ने।
1: और इहदे विच इक चीज़ होर ऐड कर दिए, जो अजकल दा सिस्टम चलदा पिया है कि जिहदे विच सोशल मीडिया बहुत अग्गे वधदा पिया है, और तुसी तुहानू काफ़ी ज़्यादा इल्यूजनरी, जिहनू कहिंदे ना कि आपां उस दुनिया च लैके जा रहा है, तुसी सोचदे हो कि पता नहीं की चीज़ हैगी है, अल्टीमेटली उहनू क्रिएट करन लई वी पढ़ाई दी ही वरतों कीती गई सी, किताबां दी ही वरतों कीती गई सी। अजे भी किसी जगह ते साइंटिस्ट नू या कंप्यूटर दे माहरां नू जरूरत हुंदी है ते उह किताबां खोल के अजे भी उत्थों ही अपनी गाइडेंस लैंदे ने। तो किताबां जिहड़ियां ने उहनां नाल दोस्ती करो, मोबाइल नाल कटाओ, अपनी दोस्ती सोच समझ के करो कि कित्थे दोस्ती करन दा फायदा है। एक भगत सिंह सी जिन्ने किताबां नाल दोस्ती करके देश नूं आज़ादी दे जिन्नू कहिंदे दरवाजे ते लैके आंदा सीगा। तो तुसी देख लो तुसी की कर सकदे हो। अज ते तुहाडे कोल बहुत ज़्यादा जिन्नू कहिंदे आ ना आपां डिवेलपमेंट हो चुकी है, उदों उन्नीआं चीज़ां फैसिलिटीज़ नहीं सीगियां, हुण ते बहुत चीज़ां ने। तो इस करके अगे वधो, जरूर अगे वधो।
0: लो जी, असी भी अपने प्रोग्राम दे विच अगे वधदे आं हरप्रीत, क्योंकि बच्चियां ने बड़े चा दे नाल, बड़े उत्साह दे नाल सानू रिकॉर्डिंग करके भेजियां ने। ते लो जी, रुख करदे आं प्यारे बच्चे दी अगली परफॉर्मेंस दे वल, ते आओ सुनदे आं ओदी ये खूबसूरत जी परफॉर्मेंस।
2: जय हिंद एवरीवन, आई एम माहिरा चोपड़ा एंड टुडे आई विल स्पीक ऑन फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन इंडिया। ही वाज सर्टेनली द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडिविजुअल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। महात्मा गांधी हैज द ऑनर ऑफ द टाइटल ऑफ

0: और फिर तुसी किसे भी सब्जेक्ट दे खूबसूरत बुलारे बन सकते हो। और अजकल तो प्यारे बच्चे सोशल मीडिया का दौर है, तुसी भी चाहते हो गे कि तुसी भी कोई अपना वड्डे होके विलॉग चैनल बनाओ या वड्डे होके लोगों नू अपने उस खास जिहड़ा एक्सपर्टीज है उहदे बारे दसो। सो प्यारे बच्चे उहदे लई की करना होएगा कि ये छोटिया छोटिया रीडिंग्स और छोटे छोटे स्क्रिप्ट तुहानू हुण तों बनाउणे आउणे चाहीदे ने। ते लओ जी प्यारे बच्चे घुंडी असी तुहानू दस दित्ती है बोलण दी पब्लिक परफॉर्मेंस दी, और हुण अगली घुंडी खोलण आ रहा है एक खूबसूरत जिहा बाल कलाकार। ते लओ जी सुणदे आ।
1: मेरा नाम पलविंदर कौर है, मैं चौथी जमात दी विद्यार्थण हां। अज मैं तुहानू शहीद भगत सिंह बारे कविता सुनावांगी। आजादी दा एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखदा सी, पिंड दे होरां बाला वांगू देखण नूं आम ही दिखदा सी। सारे बच्चे चौड़ खिडौने उसनूं आजादी प्यारी सी। भगत सिंह दे दिल विच इनकलाब दी दबी हुई चिंगारी सी। उस दीआं अखां दे सामने साका जलिया वाला बाग होया। जनरल डायर दे हुक्मां ते पंजाब दा खूनी सार होया। ओही दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दित्ता एक जवाना नूं। क्रांतिकारी बन गया भगत सिंह, त्याग के प्यार दी माला नूं। सांडरस नूं मार मुकाया, बलिदान दी कसम जो खादी सी। सांडरस नूं मार मुकाया, बलिदान दी कसम जो खादी सी। कीते धमाके संसद दे विच बोलियां नूं गूंज सुनाउणी सी। फिर भेजता जेल भगत सिंह नूं, फिर भेजता जेल भगत सिंह नूं। पुठी गोलियां दी चाल हो गई जद पहली बार जेल विच 116 दिनां दी भुख हड़ताल हो गई। भगत सिंह अड़ के खड़ा रहा, उसने सुपने आजादी दे वेखे सी। भगत सिंह दीआं मुछां दे तागे गोरियां ने गोडे टेके सी। गोरे गलत साबित हुंदे सी तां मौत दा पंजा कसदे सी। गोरे गलत साबित हुंदे सी तां मौत दा पंजा कसदे सी। वेख के जज नूं गुस्से दे विच भगत सिंह होरी हसदे सी। जो चाहिया सी भगत सिंह ने आखर ओही अंजाम होया। तिन्नां नूं ही फांसी दे दिओ कोर्ट विच ऐलान होया। मिलके मां अपनी नूं भगत सिंह बोले, बेबे मैं तेरे दुध का कर्ज चुकावांगा। आजादी दे हर दीवाने विच मैं तैनू नजर आवांगा। 23 मार्च दा दिन सी आया, भूमंडल वी डोल उठिया। जेल दा हर इक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठिया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।
0: प्यारे बच्चे बड़िया खूबसूरत गल्लां करदे पए ने सरदार भगत सिंह दे बारे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दे बारे। और प्यारे बच्चेओ तुसी ये जान ही गए हो कि ये आज़ादी सानू किन्नी मुश्किल मिली है, और आज़ादी सानू मिल गई है, और हुण सानू किन्ना चीज़ां तो आज़ादी लैण दी लोड़ है प्यारे बच्चेओ। और प्यारे बच्चे हरप्रीत ना कहिंदे होणगे कि हुण सानू आजाद होया नू कादे तो आजादी लैण दी लोड़ है। प्यारे बच्चे अजे भी असी बहुत सारी रूढ़ीवादी सोचा दे गुलाम है, और सब तो पहला तो सानू गुलाम बना रखा है प्यारे बच्चे इस टेक्नोलॉजी दे छोटे जे शैतान ने, जिदे पिछे असी सारे वड्डे छोटे लग जाने हैं और अपना किन्ना समा अजाई गवा लैने हैं। और कई बारी ओ चीज साडे हरप्रीत काम दी भी नहीं हुंदी, पर ओ जिहड़ा एलगोरिदम है ना उहदे ते असीं उंगलां ऐसियां स्क्रोल करदे हां कि पता ही नहीं लगदा 3 घंटे 4 घंटे कित्थे वेस्ट कर लैने हां। सो प्यारे बच्चिओ तुहाडे ये पढ़न दे दिन ने, जिंदगी नूं रोशन करन दे दिन ने, जिंदगी नूं खूबसूरत करन दे दिन ने। सो मोबाइल फोन जरूर देखो, AI टेक्नोलॉजी जरूर सीखो, पर एक लिमिट दे विच एक सिस्टम दे विच रह के सीखोगे तां तुसी कुछ वधिया अचीव कर लोगे, नहीं तां तुसी एक मूक दर्शक बन के रह जाओगे।
2: AI टेक्नोलॉजी बहुत वधिया है, असी ओनू डिनाय नहीं करदे।
0: बिल्कुल,
2: ओ अजकल काफी तुहाडे काम भी कर रही है, तुहानू काफी गाइडेंस, हां हेल्प करदी है, गाइडेंस दिंदी है, तुहानू बहुत वधिया है आपां कहने आ। पर बच्चो हर चीज जड़ी वधिया हुंदी है ओदे नाल बहुत होर चीजा भी जुड़िया हुंदिया ने, और ओ हैगिया ने जड़िया थानू चिपका लेंदिया ने अपने कोल। सुखदीप जी ने सारिया गल्ला कर दित्तियां, आपां होर गल इस

0: और बहुत अच्छा लगेगा तुहानू।
1: वैसे सुखदीप भी जी 27 सितंबर नू वर्ल्ड रिवर्स डे भी है,
0: हाँ
1: मतलब कि जिन्हों आप कहने हैं ना कि जेड़े पानी,
0: दरिया।
1: हाँ जेड़ा पानी है ना, पानी कदी किसी का रुकता नहीं है, किसी बारे सोचता नहीं है, पानी ने अपना रास्ता आपे बना ही लेना है।
0: लो जी प्यारे बच्चे, तुहानू पता ही है कि साढ़े उत्तर दे विच हिमालया पर्बत विराजमान है और उदे उपर खूब सारी बर्फ पैंदी है, और ये बर्फ हरप्रीत जदों पिघलती है ना तो फिर हौली हौली झरनिया तो दरियावां दा रूप धारण कर लैंदी है, और साढ़े पंजाब दी धरती नूं क्या ही पंजाब इसे करके जांदा है क्योंकि ये
1: पंजा दरिया।

0: जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था, इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्म भूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश के लाखों युवाओं ने हाल ही में नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक काम के लिए एक साथ आते हैं।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत भविष्य में युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता विकसित कर रहा है ताकि आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुखी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सके। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। जापान एशियाई खेलों में आज अंकुश ने मुक्केबाजी के 80 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम और महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 से सहित 30 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

हुण तो थोड़ी देर बाद यानी 1:15 तो लैके 1:40 तक ते फिर 2 तो लैके 2:15 तक तुसी सुनोगे प्रोग्राम फौजी वीरां लई। दोपहर 2:30 सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच तुसी मुख्तियार सिंह जफर टाडी ते साथियां दी आवाज विच कविश्री सुनोगे। साडी दूजी सभा दे शुरू विच 4 मुख समाचारां तों बाद 4:02 ते सुनोगे प्रोग्राम स्पेक्ट्रम।

0: एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि सैर सपाटा हुण सिर्फ वक वक थावां दी यात्रा करन बारे नहीं सगों ए रुजगार स्थानक आर्थिकता ते विकास दा इक शक्तिशाली थंब बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी अगवाई हेठ विकसित भारत लई एक आर्थिक शक्ति वजों सैर सपाटे नूं उत्साहित करन दे यतन कीते जा रहे ने। श्री शेखावत ने कहा कि देश की अमीर विरासत सभ्याचार ते कुदरती वन संवंता देश के लखां नौजवानां लई नवें मौकियां दा स्रोत बनना चाहीदी है। उन्हां भारत नूं सैर सपाटे लई दुनिया दा पसंदीदा स्थान बनाउण दे संकल्प नूं मजबूत करन दी अपील कीती। भारतीय जनता पार्टी वालों नशा मुक्त पंजाब यात्रा का सिलसिला जारी है। इसे तहत कल अमृतसर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी आगुओं और वर्करों वालों करवाए एक विशाल प्रोग्राम शिरकत की। मीडिया नाल गलबात करदे मुख्यमंत्री ने पंजाब की धार्मिक ते इतिहासक महत्ता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह पावन धरती गुरुआं संतां ते महापुरखां की धरती है। उन्होंने इस पवित्र धरती को सिर झुका के नमन किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी के ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी लोक भलाई नीतियां नाल लगातार जोड़ रहे ने। अमृतसर के भारत पाक सरहद नाल लगते राजाताल इलाके विच बीएसएफ ने तलाशी मुहिम दौरान करीब एक किलो हैरोइन ते एक छोटा ड्रोन बरामद किया है। मुढ़ली जांच दौरान यह शक जताया जा रहा है कि नशीले पदार्थों की खेप ड्रोन राही पहुंचाई गई हो सकती है। हालांकि पुलिस वालों अजे तक हैरोइन ते ड्रोन नाल संबंधित किसी व्यक्ति की पछाण नहीं की गई ते अणपछाते मुलजम खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की अगलेरी जांच जारी है। उधर फाजिलका पुलिस ने भी तीन तस्करों नूं 270 ग्राम हैरोइन दो ड्रोन ते एक मोटरसाइकिल समेत काबू किया है। एसपी सतिंदर कुमार ने दस्सिया कि मुढ़ली जांच मुताबक हैरोइन पाकिस्तान तों ड्रोन राही मंगवाई गई सी। इस संबंधी थाना सदर जलालाबाद विच मामला दर्ज किया गया है। पंजाब सरकारों राशन कार्डों में दर्ज गलत वेरव्या शोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिनेकार हुण अपने वेरव्या विच खुद ऑनलाइन शोध कर सकते हैं। इस बारे बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान ने दस्सिया कि पंजाब सरकार ने नवे राशन कार्ड बनाने ते पुराने राशन कार्डों में मैंबर जोड़ने की दरखास्तां मंगियां सन। उस समय कुछ लोगों वालों अपने वेरवे सही ढंग नाल दर्ज नहीं किए गए। उन्होंने दस्सिया कि हुण उसे पोर्टल ते पता जां होर वेरवे विच दुरुस्त करने लई ऑप्शन दित्ती गई है तां जो नवे राशन कार्ड बनाने का काम नेपड़े चाढ़िया जा सके। पंजाब सरकारों गुरु रविदास जी के 650 प्रकाश पुरब में समर्पित राज पद्धरी जागरूकता मुहिम तहत प्रचार वैन श्री मुक्तसर साहब विधानसभा हल्के के पिंड सदरवाला मड़ू मल्लू ते कबरवाला विखे पहुंची। प्रचार वैन राही गुरु रविदास जी के जीवन बाणी और समाजिक बराबरी ते मुखी एकता के संदेश से आधारित दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। लोगों ने फिल्म में श्रद्धा और रुचि नाल देखा। तरन तारण के नशहरा पन्नूआं के जिला पद्धरी किसान मेला 29 सितंबर को लगाया जा रहा है। यह मेला खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग वालों आत्मा स्कीम तहत लगाया जा रहा है। क्रिकेट विच भारत ते वेस्टइंडीज विचकार 3 दिन एक रोजा मैचों की लड़ी अज तो शुरू हो रही है। इस तों बाद दोवें टीमों विचकार 5 मैचों की T20 सीरीज खेडी जाएगी। इस दे नाल ही प्रादेशिक खबरां खत्म हुई। साडा एक्स हैंडले आरंजू जलंधर। राष्ट्रीय खबरों का अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे 1:40 ते। नमस्कार।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश है प्रोग्राम फौजी वीरां लई।

फौजी वीरो जय हिंद। प्रोग्राम लेके तुहाडी खिदमत हाजिर है भाविनी। पेश है जी अज दे प्रोग्राम दा पहला गीत अरिजीत सिंह ते नेहा कक्कड़ दी आवाज़ विच।

0: जरूरी सूचना आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिला जलंधर शहीद भगत सिंह नगर मलेरकोटला संगरूर बरनाला बठिंडा मानसा फिरोजपुर मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जी दी मांग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े बीएमसी चौक जलंधर है। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वेबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तों भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे एह कोई नियमित रोजगार नहीं है।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: हेलो
3: नमस्कार, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
4: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
5: मैं तो टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
6: नहीं यार।

0: फौजी वीरो, प्रोग्राम हजे जारी है। 1:40 हो रहे ने। हुण सुणदे हाँ पंजाबी च खबरां ते फिर इस दे कुछ पलां बाद समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों।
1: नमस्कार, आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दी खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे किए। कहा भारतीय फौज वालों पाकिस्तान च दहशतगर्दी टिकाणियां ते की गई सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की दहशतगर्द विरोधी नीति की एक नवी मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री वालों नौजवानों को नशा मुक्त युवा मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत भविख में जंग की प्रकृति की ध्यान च रखते हुए अपन समर्थावान का विकास कर रहा है। अज विश्व सैर सपाटा दिवस मनाया जा रहा है ते भारत ते वैस्ट इंडीज दरमियान 3 एक रोजा क्रिकेट मैचों की लड़ी अज तो शुरू। पहला मैच अज दोपहर बाद 2 बजे तिरुवनंतपुरम च खेडा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय फौज वालों पाकिस्तान च दहशतगर्दी टिकाणियां ते की गई सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की दहशतगर्दी

0: विरोधी नीति भी एक नई मिसाल पेश की थी। आज आकाशवाणी से अपने मन की बात प्रोग्राम चुना गया कि देश कल 28 सितंबर में स्ट्राइक की 10वीं वरीकंड मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया देख के हैरान है कि किवें बहादुर भारतीय जवानों ने दहशतगर्दी खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने लिए कंट्रोल रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि देश लंबे समय तो दहशतगर्दी हमलों तो पीड़ित सी और सर्जिकल स्ट्राइक इसका फैसला कुन जवाब सी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दहाके दौरान बालाकोट हवाई हमले तो लैके ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार इस संदेश दिता है कि दहशतगर्दी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिता जाएगा।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 11 सितंबर को अमेरिका च वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से हुई दहशतगर्दी हमले की 25वीं बरसी है। मर्दमशुमारी बारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका पहला गेड़ करीब सारे राज्यों च पूरा हो गया है ते 32 करोड़ तो वध परिवारों का डेटा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि इस समय लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ते उत्तराखंड के दूर दुराडे ते बर्फ नाल ढके खेतरां च काम चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना हर किसी की राष्ट्रीय जिम्मेवारी है ते लोग अपने मोबाइल फोन की वरतों करके अपनी ते अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते ने।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: हुण तक 2,60,00,000 तो वध लोगों ने अपने मोबाइल फोन की वरतों करके अपने वेरवे रजिस्टर किए ने। प्रधानमंत्री ने आंदी 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी की जयंती का हवाला दिंदया कहा कि सफाई गांधी जी के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों चो एक सी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही महात्मा गांधी ने सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त युवा मुहिम के तहत देश भर के लखा नौजवानों ने हाल ही नशा तो दूर रहने का अहद लिया है। इस प्रचार की जिम्मेवारी भी ली है। श्री मोदी ने कहा कि यह मुहिम 100 हफ्तों तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने नौजवानों को अपनी रचनात्मकता की वरतों करके इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की थी। उन्होंने खुशी जाहिर की थी कि माई इंडिया प्लेटफॉर्म से राष्ट्रीय गीत, स्लोगन, लेखन ते नुक्कड़ नाटकों समेत कई मुकाबले आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने भारत के निरंतर मजबूत प्रदर्शन को यकीनी बनाने लिए पिंडों ते कस्बों तो खिडारियों को लभण की जरूरत पर भी जोर दिता। श्री मोदी ने पंजाब के अरजिंदर सिंह का जिक्र किया जो साल 1980 के ओलंपिक च सोने का तमगा जितने वाली हाकी टीम का हिस्सा रहे ने। 1982 के विश्व कप विच भी शानदार प्रदर्शन किया। हाकी विच भारत के प्रभावशाली प्रदर्शन की चर्चा करदिया श्री मोदी ने कहा कि भारत ने 2001 च अपना पहला जूनियर मर्द विश्व कप ते 2003 च सीनियर एशिया कप जीते। प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद पहलकदमी बारे भी अपील की थी। श्री मोदी ने कहा कि इस साल कुपोषण नाल निजठण लई कई पहलकदमियां कीतियां गईयां ने। इह आंगनवाड़ी केंद्र हुण पोषण ट्रैकर नाल डिजिटल तौर ते जुड़े हुए ने। श्री मोदी ने कहा कि उन्हां नूं आंगनवाड़ी केंद्रां नाल जुड़े लोकां ते माण है। अखीर च प्रधानमंत्री ने लोकां नूं उत्साहजनक कहानियां सांझे करदे रहण दी अपील की थी क्योंकि इह जानकारी ते कहानियां दूजिआं नूं प्रेरणा दिंदियां ने। इसे तहत पंजाब के रजिंदर सिंह चुन्ना का जिक्र अज प्रधानमंत्री वालों मन की बात किया गया। उन्होंने मोहाली तो आकाशवाणी के पत्रकार मनोज कीर्तन नाल एक विशेष गलबात करदिआं कहा।
2: मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने एक राउंड ग्लास बारे और मेरे बारे ना लिया ते ए प्रेरणा दे नाल नाल मैं कॉन्फिडेंस भी मिलेगा ते मैं होर भी वधिया काम करांगा। मेरे नाल नाल जिन्हें भी खिडारी है या कोच ने उन्होंने भी एक प्रेरणा मिलेगी।
0: यह खबर आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साड़ा एक्स हैंडल है @RNU जलंधर। साड़ा फेसबुक पेज है RNU-EIR जलंधर। यूट्यूब से साड़ा चैनल है @EIR जलंधर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत तो भविष्य में जंग की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी समर्थाओं का विकास कर रहा है ता जो एक आत्मनिर्भर ते अगां वधू रक्षा प्रणाली बनाई जा सके। अज नवी दिल्ली च एक समागम च बोलदिआं उन्होंने कहा कि देश सिर्फ तकनालोजी की दरामद ते ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा सगों रक्षा तकनालोजी नूं विकसित करन लई भी यतनशील है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भविष्य दीआं जंग तकनालोजी आधारित होणगीआं ते तकनीकी तौर ते उन्नत मुल्कां दी जंग दे मैदान च इक उच्च स्थिति होवेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ना तां जंग चाहुंदा है ते ना ही किसी देश दे खेतर ते कब्जा करना चाहुंदा है।

स्पष्ट किया कि शांति ते कमजोरी विच अंतर हुंदा है। भारत शांति का समर्थन करता है पर अपनी सुरक्षा नाल समझौता नहीं करेगा। अज विश्व सैर सपाटा दिवस है। इस मौके सभ्याचार ते सैर सपाटा मंत्री गुरजिंदर सिंह शेखावत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा है कि सैर सपाटा हुण सिर्फ वख-वख थावां दी यात्रा करन बारे नहीं सगों रुजगार स्थानक आर्थिकता ते विकास दा एक शक्तिशाली थम भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी अगुवाई हेठ विकसित भारत लई एक आर्थिक शक्ति वजों सैर सपाटे नूं उत्साहित करन दे उपराले कीते जा रहे ने। उन्होंने भारत नूं सैर सपाटे वास्ते दुनिया दा पसंदीदा स्थान बनाउण दे संकल्प नूं मजबूत करन दी अपील कीती। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने भी देश नूं विश्व सैर सपाटा दिवस मौके वधाई दित्ती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने कहा कि सैर सपाटा वख-वख लोकां सभ्याचारां ते समाज प्रति जागरूकता वधाउण दी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हेठ भारत यात्रा प्रेमियों लई एक सुरक्षित ते विकसित स्थान वजों उभर के सामने आया है।

0: कार्रवाई थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वजीर आजम ने कहा कि 9/11 के दहशतगर्दाना हमलों को भी इस साल 25 साल हो गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि अमरीका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इन हमलों में हलाक होने वालों में अमरीकियों के बाद सबसे बड़ी तादाद भारतीय अफराद की थी। जनाब मोदी ने 2014 में वजीर आजम बनने के बाद अमरीका के अपने दौरे में इन बेकसूर लोगों को खराज अकीदत पेश करने का तस्करा भी किया। मौजूदा मर्दुमशुमारी के अमल का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इस अमल का पहला मरहला करीब करीब मुकम्मल हो गया है। 32 करोड़ से ज्यादा कुंभों का डेटा पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि मर्दुमशुमारी की तफसीलात खुद ही रजिस्टर करने की सहूलत बहुत ही सहल है और लोग अपने मोबाइल फोन से ही खुद के बारे में और अपने अरकान खानदान के बारे में जानकारी का इंदराज कर सकते हैं।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: जानकारी दाखिल करने के बाद लोगों को एक खसूसी आईडी मौसूल होगी जिसे वो मर्दुमशुमारी करने वाले इन्यूमरेटर के आने पर शेयर कर सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि आज विश्व हिंदू परिषद के साबिक इंटरनेशनल वर्किंग सदर आजहानी अशोक सिंघल का 100वां यौम पैदाइश भी है। जनाब मोदी ने उन्हें एक अजीम शख्सियत करार दिया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सकाफत मुआशरे और मुल्क के लिए वक्फ कर दी थी। वजीर आजम ने महात्मा गांधी की जयंती का भी जिक्र किया जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि सफाई सुथराई जिंदगी के उन बहुत से रहनुमा उसूलों में से एक है जो बापू ने दिए थे। आजम ने कहा कि मुल्क भर के करोड़ों नौजवान अफराद ने नशा मुक्त युवा अभियान के तहत मुनशियात और नशा आवर मादों के खिलाफ हाल ही में अहम अहद किया है।
1: आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आस पास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं।
0: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अजीम जश्न के साथ इस साल का आगाज किया था। जनाब मोदी ने कहा कि महमूद गजनी ने 1000 साल पहले पहली मर्तबा 1026 में सोमनाथ मंदिर को मुनहदिम कर दिया था। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सोमनाथ मंदिर समुद्र के किनारे अपनी पूरी शान शौकत के साथ आज भी खड़ा है। अपने खिताब के आखिर में जनाब मोदी ने सामईन से जोर देकर कहा कि वो अपने बाइस तरगीब किस्से और कहानियां शेयर करते रहें। वजीर आजम ने कहा कि मन की बात के जरिए इन कोशिशों के बारे में सीखने से मुल्क के दीगर हिस्सों के लोगों को भी तरगीब मिलती है। नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने यह उम्मीद जाहिर की कि लोग अपने अजीज व अकारिब के साथ आने वाले त्यौहार पूरे जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत खुद कफील और मुस्तकबिल के दिफाई इको निज़ाम तैयार करने की सम्त आगे बढ़ते हुए अगले 10, 20, 25 साल के दौरान जंगी साजो सामान की नौईयत को मलहूज खातिर रखते हुए अपनी सलाहियत बढ़ा रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस के जेर एहतमाम प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही।
2: आज का युद्ध केवल सैनिक बनाम सैनिक नहीं है, आज का युद्ध मल्टी डोमेन है। भविष्य में सुरक्षा का क्षेत्र और युद्ध का मैदान टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होगा। जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा उसे बैटल फील्ड में स्वाभाविक रूप से एडवांटेज होगा। इसलिए हमने भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी को फ्यूचर रेडी बनाने पर बल दिया है।
0: आज पूरी दुनिया में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा

0: रहा है। ये दिन मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, एक दूसरे की सकाफत को जानने और इक्तसादी तरक्की को तकवीत फराहम करने में सियाहत के नुमाया रोल को उजागर करता है। इस साल का मौजू है सियाहत को अज़रेनो वज़ा करने के लिए डिजिटल एजेंडा और मस्नूई ज़हानत। ये मौजू सियाहत के मुस्तकबिल का तायुन करने में टेक्नोलॉजी के रोल को नुमाया करता है। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक ग्राहकों की सहूलत के लिए आज खुले हुए हैं। ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जानिब से पूरे मुल्क में कल से शुरू होने वाली मुजव्वजा 3 रोजा बैंक हड़ताल के पेश नज़र उठाया गया है। पाकिस्तान में शुमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा सूबे के डेरा इस्माइल खान में हुए धमाके में 12 अफराद हलाक और 35 दीगर जख्मी हो गए। ये धमाका कल उस वक्त हुआ जब धमाका खेज मादे से भरी गाड़ी पुलिस चेक पॉइंट में जा टकराई और जोर का धमाका हुआ। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के अंकुश पंघाल बॉक्सिंग में 80 किलोग्राम जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेकरूस सलीमोव को 5-0 के मुत्तफ़िका फैसले से हरा दिया। इस तरह बॉक्सिंग में भारत को पहला तमगा मिलना तय है। अंकुश पहली मरतबा एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। मर्दों की क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 1 रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। यह मैच अब से कुछ देर बाद 2 बजे शुरू होगा। भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही 2 महीने के वक्फे के बाद भारत की 1 रोजा क्रिकेट मैचों की टीम में वापस आ गए हैं। इस सीरीज में शुभमन गिल भारतीय टीम की कमान संभालेंगे जबकि शाई होप वेस्टइंडीज के कप्तान हैं। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल पेश की और ये पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो मुनशियात से दूर रहें और मुल्क से मुनशियात के खात्मे के पैगाम की तशहीर करें। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो मर्दों शुमारी के अमल में शामिल हों और खुद ही तफसीलात का इंदराज कराने की सहूलत का इस्तेमाल करें। लोगों की सहूलत के लिए सरकारी मिल्कियत के सभी बैंक और इलाकाई देही बैंक आज खुले हुए हैं। एशियाई खेलों में बॉक्सर अंकुश पंघाल मर्दों के 80 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और इस तरह भारत को एक तमगा मिलना तय है। और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के साथ पहले 1 रोजा मैच में भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: खबरों तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई। आओ हुण सुनदे आं अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत, जुबिन नौटियाल ते नीति मोहन दी आवाज़ विच।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है तां सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलों जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े बीएमसी चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वेबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
4: ਓਏ ਮਨੂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ।
1: ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਕਦੇ ਮਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
4: ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਐਚਆਈਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
1: ਐਚਆਈਵੀ
4: ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਸੁਣ, ਐਚਆਈਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੂਈ ਸਰਿੰਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਚਆਈਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम फौजी वीरां लई। सुनदे आज दे प्रोग्राम दा अगला गीत आतिफ असलम दी आवाज़ विच।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत

0: आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
0: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकाले। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
0: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
0: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
1: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
0: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
0: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडियाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथौन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय

0: परिवर्तन हुए हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए टैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता दोगुनी हो जाएगी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
2: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
0: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसमें एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनएक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है,
4: इनएक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें, मैटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। इनएक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
3: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड

0: स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं के 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनुराघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वह विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वह कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृता नंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृता नंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। दोपहर दे 2:30 हो रहे ने। हुण पेश है जी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच आओ सुनदे हां मुख्तियार सिंह जफर टाडी ते साथियां दी आवाज़ विच कविश्री।
2: सत समुद्रों पारों आए गोरे साम्राज्यां पाड़ो ते राज करो दी नीति राही भारत नूं गुलाम बनाया। गुलामी बारे भगत बाणी च दर्ज है, बार पराए बैसना साई मुझे ना दे, जे तू इवें रखसी ता जियो शरीरों ले। भारतीयां नूं राजसी आर्थिक ते समाजिक तौर ते तबाह कीता छात्र हुकमराना ने। नामधारियां गदरी बाबियां होर अनेकां मर्जी वड़ियां ने सिर तली ते रख के जूझिया। पगड़ी संभाल जट्टा लहर ने किसानी नूं हलूणिया। संग्राम दा मैदान गर्म होया। होली दियां छुट्टियां सन। कौमी कॉलेज दे नौजवान रावी दनिया दे किनारे ते जुड़े। भगत सिंह ने साथियां नूं वंगारदिया कहा, आजादी दी जंग विच हिस्सा पाउण लई आओ सूरमे नित्रो मैदान दे विच। अखीर चाकू दी नोक नाल सभना दे खून दे तुबके भगत सिंह ने हथेली ते एकत्र कीते। आजादी दे रांझे तैयार कीते। परण पत्र ते दस्तखत हे इउं कीते।

0: हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच तुसी मुख्तियार सिंह जफर ढाडी ते साथियां दी आवाज़ विच कविश्री सुन रहे सी। आकाशवाणी दा ये जलंधर केंद्र है। साड़ी इस सभा दे प्रोग्राम हुण समाप्त हुंदे ने। अगली सभा दे प्रोग्राम लैके शाम 4 बजे फिर तुहाडी सेवा च हाजिर होवांगे। DTH दी आकाशवाणी दी पंजाब सेवा राहीं तुसी हुण सुन सकदे हो प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। तद तक लई सानूं इजाजत दिओ।
1: DTH डीयर पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। इस वक्त दिन वज चुके ने ते समा हो रहा है न्यूज़ हेडलाइंस का।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच देश ते विदेशा दे लोकां नाल अपने विचार सांझे कीते। कहा भारतीय फौज वालों पाकिस्तान विच दहशतगर्दी टिकानियां ते कीती गई सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया सामने भारत की दहशतगर्दी विरोधी नीति की एक नवी मिसाल पेश कीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों नौजवानों नूं नशा मुक्त युवा मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत भविख विच जंग की प्रकृति नूं ध्यान विच रखते हुए अपनियां समर्थावां का विकास कर रहा है। पंजाब सरकार वालों गुरु रविदास जी दे 650वें प्रकाश पूरब नूं समर्पित राज पदरी जागरूकता मुहिम तहत प्रचार वैन श्री मुक्तसर साहिब दे पिंड सदरवाला

हाँ जी दोस्तों, इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियां मिठियां, तो मैं आरजे पूनम सेठी इस वक्त तुहाडे नाल जुड़ी हुई हाँ। दोस्तों हुने हुने जो गीत तुसी सुनिया, उम्मीद है तुहानू सब नू पसंद आया होवेगा। चिट्ठियां दा सिलसिला इंज ही अगे वधाउंदे आ। अगला जिहड़ा खत है वह है माखू फिरोजपुर तो। लिखण वाले ने बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मुनीश बजाज। तो इन्हां ने फरमाइश की कि जगमोहन कौर की आवाज़ में एक गीत है कुंड विच नहीं लुकदे, ये सुनना चाहते ने। आपां तुहानू थोड़ी देर च जरूर सुनावांगे। इस तो बाद जिहड़ी चिट्ठी आई है वह आई है पटेल नगर मलोट पंजाब तो। लिखण वाले ने डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, बेबी आरजू जजोरिया। इन्हां तो अलावा जिन्हां ने सानू चिट्ठी लिखी है उन्होंने नाँ ने रविदास नगर मलोट तो नानक चंद जजोरिया, बंटी कुमार देवतवाल, विजय कुमार रातिया, सुनील कुमार देवतवाल, प्रिंस कुमार जजोरिया। फिर चिट्ठी आई है आदर्श नगर मलोट तो। लिखण वाले ने राज

शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा ते निवान शर्मा। ते इन्हां दी हुण फरमाइश ते पेश है अगला नगमा सिर्फ तुहाडे लई।

हाँ जी दोस्तों, जेकर तुसी हुणे हुणे अपने रेडियो जां डीटीएच सेट ऑन किते ने तां तुहानू दस दें कि तुसी सुन रहे हो चिट्ठियां मिठियां आर जे पूनम सिटी दे नाल। ते थोड़ी जी होर चिट्ठियां आपां पढ़ लैने आ। चिट्ठी आई है जमशेदपुर तों, लिखण वाले ने हरजिंदर सिंह पाटिया, एंजल पाटिया, नवनीत पाटिया, पप्पी पाटिया। फिर चिट्ठी आई है करणवीर हाउस पूछो कैंचिया बठिंडा तो, लिखण वाले ने प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन, अभिजोत। फिर चिट्ठी आई है मुक्तसर तो, बब्बू सिंह तीमन, बलजिंदर कौर तिमान, सॉरी रवनीत, निशु ते भुपिंदर। फिर चिट्ठी आई है मॉडल टाउन करनाल तो, लिखण वाले ने सुधीर, नूतन, माया कुमार, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, ईश परीत शर्मा, बिपाशा शर्मा, हरिपाल कौर। फिर चिट्ठी आई है लिखन वाले ने वीरपाल कौर, रावी, बलजीत, गगनदीप कौर। ते ए गुरनाम भुल्लर दी आवाज़ विच गीत सुनना चाहते हैं, ते आपां तुहानूं गीत जरूर सुनावांगे गुरनाम भुल्लर दी आवाज़ विच, तारियां तो पार।

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियां मिठियां, ते मैं आरजे पूनम सेठी इस वक्त इस प्रोग्राम में पेश कर रही हूं। दोस्तों जेकर तुसी भी अपने दिल दी गल साडे नाल सांझी करना चाहते हो तो देर किस गल दी है, चक्को पेन ते खत लिख दियो चिट्ठी ते मैं तुहाडियां चिट्ठियां पढ़ांगी जरूर। अगली चिट्ठी जिहड़ी आई है वह आई है पवनाल हाजीपुर तो। लिखण वाले ने विजय कौंडल, पूजा कौंडल, अलीशा ते आदित्य, रजनीश कौंडल, बस अड्डा हाजीपुर तो। इन्हां तों अलावा जिन्हां ने सानूं चिट्ठी लिखी है वह आई है चिट्ठी चौधरी मार्केट अबोहर रोड मलोट तो। लिखण वाले ने कप्तान सिंह, सैक्रटरी शमशेर सिंह, धर्मिंदर शर्मा, रविंदर राधे ते मनफुल। फिर चिट्ठी आई है ज़िला श्री फतेहगढ़ साहिब तो। लिखण वाले ने रामनाथ हतापुर, सुखमनजीत सिंह, सहज प्रीत कौर ते किसी भी गीत नूं शामिल करने वास्ते उन्होंने कहा है ते लिखते ने कि प्रोग्राम पेश करता मैडम जी दा तहे दिलों धन्नवाद जी, सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी, आदाब जी। हाँ जी बिल्कुल जी, तुसी सानू मैसेज किया, सानू तुसी खत लिखिया, बहुत टाइम तो लिख रहे हो ते सानू बहुत चंगा लगता तुहाडे खत पढ़ के, इदां ही अगे भी लिखते रहो। फिर चिट्ठी आई है पिंड खाने की टाब मलोड़ तो। लिखण वाले ने शमशेर सिंह कौलतर, जसविंदर कौर, करण प्रताप सिंह, मनरीत कौर, तरनवीर सिंह ते मनताज। फिर चिट्ठी आई है गांधी चौंक रोपड़ पंजाब तो। लिखण वाले ने हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक, मीका बिरक। फिर चिट्ठी आई है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान तो। लिखण वाले ने जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जी एस नायक, शोभा नायक ते पूरा ही डागला परिवार। फिर चिट्ठी आई है सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो। लिखण वाले ने टी टी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप कालका तो, इन्हों कुछ सज्जन मित्र ने उन्होंने भी नाम लिखे ने, शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज ते साहिल। फिर चिट्ठी आई है मेहस गेट नाभा तो, सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमन्नत ते। इन्हों ने फरमाइश की है कि ये हंसराज हंस की आवाज़ विच गीत सुनना चाहते ने, जो कि आपां तुहानूं जरूर सुनावांगे। गीत सुनदे आं नची जो साडे नाल।

हाँ जी दोस्तों, इस वक्त मेरे सामने मेज ते पीले रंग दे खतां दा ढेर लग्या होया। किसे चिट्ठी ते सोहनी इबादत लिखी है ते किसे ते डाकखाने दियां मोहरां लगियां ने। अज ते डिजिटल दौर विच जदों असी हथ नाल लिखी चिट्ठी देखते हाँ तां दिल बागो बाग हो जांदा है। ते आओ हुण आपां पढ़दे हाँ कुछ होर खत, देखदे हाँ कि अज होर की लिखिया है साडे वास्ते। चिट्ठी आई है पिंड कुड़ियाना फाजिलका तो। लिखण वाले ने बाबा त्रिलोक सिंह सुखना, दोता शिवजोत सिंह ते उना दा पूरा परिवार, दोस्तां ने भी नाल लिखे ने, बलोर सिंह, बलतेज कुड़ियाना ते भोला सुहाग। फिर चिट्ठी आई है ताज मुहम्मद असारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्षर हरिद्वार तो। फिर चिट्ठी आई है चकला बाजार समाना तो बप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल। फिर होर भी कुछ होर चिट्ठियां ने। चिट्ठी आई है वार्ड नंबर 10 पुरानी मंडी मुल्लापुर तो। लिखण वाले ने बिट्टू जैन, मट्टू जैन, दीपक जैन, गौतम जैन, राजेश जैन, अरुणा जैन, संजीव जैन, नीला जैन, विक्की जैन ते बिंदु जैन। फिर अनारकली बाजार जगराओं तो चिट्ठी लिखी है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, शीश मल्होत्रा, बेबी गव्या भाई, सुचा पाठक। फिर रावर करनाल तो ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया ने सानू चिट्ठी लिखी है। फिर चिट्ठी आई है पिंड पाजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। लिखण वाले ने सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। फिर पवनाल हाजीपुर तो विजय कौंडल, पूजा कौंडल, अलीशा ते आदित्य, रजनीश कौंडल, बस अड्डा हाजीपुर तो। ए सुरिंदर कौर की आवाज़ विच गीत सुनना चाहते ने ते आपां बहुत ही खूबसूरत गीत लभ्या है। बोलियां आपां सुनांगे, बोलियां आओ सुनदे हां।

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियाँ मिठियाँ, ते मैं आरजे पूनम सिटी इस वक्त इस प्रोग्राम में पेश कर रही हूँ। दोस्तों, भावें अजकल मोबाइल ते एक सैकेंड विच मैसेज पहुँच जाता है, पर जो सुकून चिट्ठी का इंतजार करन विच सी, ओ इस डिजिटल दौर विच किथे। इस स्याही ते कागज़ की अपनी ही एक महक होंदी है। चलो इस महक नूं बरकरार रखते हुए अगला खत चुकते हैं। एक खत आया है पिंड मुलियां वाली जिला फाजिलका तो, लिखते ने नमस्कार, फिर इन्हों के नाम भी लिखे ने। नाम ने परवीन राणी, आशा राणी, दीक्षा राणी, जन्नत राणी ते गुरलीन राणी। किसी भी पंजाबी गीत नूं सुनना चाहते ने। इन्हों तो अलावा चिट्ठी आई है पिंड कुड़ियाना अरनी वाला मंडी तो, लिखन वाले ने बाबा त्रिलोक सिंह, दोता शिवजोत सिंह, गुरसिमरन, राजदीप ते प्रीत। दोस्तों के भी नाम लिखे ने बलतेज कुड़ियाना, दीपा भिंगड़ा, पोला स्वाग। फिर पिंड कुड़ियाना जिला फाजिलका तो चिट्ठी आई है डॉक्टर अमनजीत सिंह, अमृतपाल कौर, पोतरा गुरतेश्वर, अभिजोत, गुणताज, रजनीश, रुबाब, दोस्त बलतेज सिंह, आर पी सिंह, नछत्तर सिंह सिद्धू, जीत सिंह। इन्हों तो अलावा जिन्होंने चिट्ठी लिखी है मसीता डबवाली तो, लिखन वाले ने दर्शन लॉट, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, हनी लॉट। फिर चिट्ठी आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला तो, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक बत्ता, करण बत्ता, गीतू बत्ता, हार्दिक, निहारिका ते वंशा वंश बत्ता। फिर चिट्ठी आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ तो, बहुत दूरों चिट्ठी आई है, लिखन वाले ने दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। फिर पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो, लिखन वाले ने सोहन सिंह बूक, निशान सिंह बूक, सीरत कौर, कीरत कौर, दादी जसवंत कौर, अमरलाल पोस्टमैन, रिश्तेदारों के भी नाम लिखे ने सुरिंदर कौर बूक, तलविंदर कौर बूक, बलदेव सिंह। आप हम अगला गीत सुनते हैं गुरदास मान की आवाज़ में, छल्ला।

हाँ जी दोस्तों, इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है चिठियां मिठियां, तो मैं आरजे पूनम से इस वक्त थोड़े नाल जुड़ी हुई हाँ। जेकर तुसी भी चाहते हो कि तुहाडे हाथ की लिखी चिट्ठी इस प्रोग्राम का शिंगार बने, तो देर ना करो, चुको कागज कलम, अपने दिल की गल लिखो तो साढ़े पते ते भेज दियो। सानू तुहाडियां चिट्ठियां, तुहाडे फरमाइशी गीतां ते तुहाडियां मिठियां यादां दा बेसब्री नाल इंतजार है। हुण कुछ आपां चिट्ठियां होर पढ़ लैंदे हां। चिट्ठी आई है छत्तीसगढ़ तों, लिखण वाले ने दतरंगी तों भागवत वर्मा, लवई तों गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर तों विश्वनाथ साहू, चंडोगरी पिपरियां तों दुर्गा राम साहू। फिर चिट्ठी आई है करणवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पूछो कैंचियां तों, लिखण वाले ने प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर ते सिमरन, कुलदीप एकम, दमन अभिजोत। फिर चिट्ठी आई है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना तो, लिखण वाले ने विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा, पूजापुरी। फिर गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रमा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीशपुरी, सतीशपुरी, राकेशपुरी, विनोदपुरी, पालीपुरी, डीसीपुरी, अरुणपुरी, नेहापुरी, एकतापुरी, शम्मीपुरी, बॉडीपुरी, सुनीलपुरी, वीकेपुरी ते आरसपुरी। ए लालचंद यमला जट दा गीत सुनना चाहते हैं, जो कि अपन तुहानू जरूर सुनावांगे थोड़ी ही देर च। अच्छा, जिहड़ा अगला मैसेज आया है, अगला चिट्ठी आई है, वो आई है पंचकुला सैक्टर 9 तो, लिखण वाले ने आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक डिंगरा। एक मैसेज भी लिखे इन्होंने, लिखते हैं कि आजकल लोग रखते हैं टच फोन, पर मुश्किल ये है कि टच में कोई नहीं। बहुत ही सोना मैसेज है। वे चिट्ठी आई है फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो, गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांडा ते जी एस रामगढ़िया। हुण आपां अगला गीत सुनते हैं। अगला गीत है लालचंद यमला जट की आवाज़ विच, खेडन दे दिन चार।

चिट्ठी आई है अमरगढ़ तहसील सादुल शहर तो लिखन वाले ने कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, हरविंदर मान, राजा सिंह मान, कुलविंदर कौर मान ते के एस मान। फिर मेन रोड अरायन ते श्री तहसील श्री करनपुर तो लिखन वाले ने श्री अकाल जी रेडियो स्त्रोता संघ, लिखन वाले ने सोलंकी रंजीत सोलंकी, परमजीत कौर सोलंकी, विष्णु देव सोलंकी, राजवीर सोलंकी, रमन राठौर, जस्सू पवार, जगवीर सोलंकी ते सारा ही परिवार। फिर चिट्ठी आई है राजस्थान तो लिखते ने कि मारो प्यारो राजस्थान, सादुल शहर तो ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। फिर मेहस गेट नाभा तो सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी ते गुरमन्नत। फिर मंडी हरजी राम मलोट तो महेश गर्ग, सुषमा गर्ग, जशन गर्ग। तो लिखते ने कि कृपा करके साड़ी पसंद अभी गीत प्ले किया जाए, आप जरूर करांगे। फिर चिट्ठी आई है मोहम्मदपुर सोदर टानी रतिया तो लिखन वाले ने जीवन सिंह बूक, शंटी बूक, सिमरन बूक, कुशल्या रानी, गुरछिंदर बूक, बबू बूक, कुलदीप बूक, कीरत बूक, भूषण खेड़ा, जशन बूक। ते एक मैसेज भी लिख देने कि प्रेम ही पूजा है, प्रेम करो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। ते गायक बलकार सिद्धू की आवाज़ में गीत सुनना चाहते हैं जो कि आप लभ लिया, बहुत ही खूबसूरत गीत है डोरिया, आओ एंजॉय करते इस गीत नूं।

हाँ जी दोस्तों, दो कुछ चिट्ठियां और पढ़ लेने हैं। चिट्ठी आई है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना तो। लिखन वाले ने विनोद पुरी, वीपी रंजू अशोकपुरी, सुशील पुरी, नीलम पुरी, बीके पुरी, कैलाशपुरी, रमापुरी ते आरएसपुरी। इन्हों तो अलावा जिन्होंने सानू चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी आई है अमरगढ़ तहसील सादुल शहर तो, कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, हरविंदर मान, राजा सिंह मान, कुलविंदर कौर मान ते के एस मान। मैं दसवां कि यह हरभजन सिंह की आवाज़ में एक गीत है दुपट्टा, वो सुनना चाहते हैं, आपां तुहानूं जरूर सुनावांगे। तो हुण मैं दसवां कि कड़ी दियां सुईयां इशारा कर रही ने, तो अज दियां चिट्ठियां मिठियां का सिलसिला इत्थे ही समेटना पै रहा है। कागज़ ते उतरे जज्बातों की मिठास अज साडे दिलों में घुल गई है। जिन्हां प्यारे दोस्तों दियां चिट्ठियां अज समय की कमी करके शामिल नहीं हो सकियां, मैं उन्हां तों माफ़ी मंगदी हाँ। तुहाड़ियां चिट्ठियां साडे कोल बहुत सांभ के रखियां ने, अगले दिन आपां ये चिट्ठियां तुहाड़ियां सब तो पहलां पढ़ांगे। हुण अपनी होस्ट आरजी पूनम सेठी नूं देओ इजाजत। हसते वसते रहो, मुस्कुराते रहो, रब रखा, सत श्री अकाल जी।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की।
2: पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। शाम दे 4 बज रहे ने। साड़ी दूसरी सभा हुण शुरू हुंदी है। सभा दे शुरू विच आओ सुनदे हां हुण तक दे मुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच देश ते विदेशां दे लोकां नाल अपने विचार सांझे कीते। कहा भारतीय फौज वलों पाकिस्तान विच दहशतगर्दी टिकाणियां ते कीते गई सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया सामने भारत की दहशतगर्दी विरोधी नीति की एक नवी मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों नौजवानों नशा मुक्त युवा मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की गई है। श्री मोदी ने 1980 के ओलंपिक विच सोने का तमगा जितने वाली हाकी टीम का हिस्सा रहे पंजाब के राजिंदर सिंह का जिक्र करदिया उन्होंने योगदान की शलाघा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत भविख विच जंग की प्रकृति नू ध्यान विच रखते हुए अपनी समर्थावां दा विकास कर रहा है। पंजाब सरकार वालों गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पुरब नू समर्पित राज पदरी जागरूकता मुहिम तहत प्रचार वैन श्री मुक्तसर साहिब के पिंड सदरवाला मड़ मल्लू ते कवरवाला विखे पुजी। पंजाब सरकार वालों राशन कार्डां विच दर्ज गलत वेरव्यां नू सोधन की प्रक्रिया शुरू कर दिती गई है। तरन तारण के नौशरिया पन्नुआ विखे कल 29 सितंबर नू जिला पदरी किसान मेला लगाया जा रहा है। अमृतसर के भारत पाकिस्तान सरहद नाल लगते राजा ताल इलाके विच BSF ने तलाशी मुहिम दौरान करीब 1 किलो हैरोइन ते 1 छोटा ड्रोन बरामद किया। अज विश्व सैर सपाटा दिवस मनाया जा रहा है अते भारत अते वेस्ट इंडीज़ दरमियान 3 एक रोज़ा क्रिकेट मैचों की लड़ी का पहला मैच अज तिरुवनंतपुरम विच खेडिया जा रहा है। इस सन हुण तक दे मुख समाचार। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण समा हो रहा है जी प्रोग्राम स्पैक्ट्रम दा। पेश है प्रोग्राम स्पेक्ट्रम।
3: गुड इवनिंग लिसनर्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ स्पेक्ट्रम। आई एम योर होस्ट बीरेंद्र सिंह। टुगेदर लेट्स एक्सप्लोर द स्टोरीज द पोएट्री एंड द ब्रिलियंट माइंड्स shaping our world today. And stories condition our mind. Stories provide us energy to do good in life. And one story come to my mind which I would like to share with all of you. Once there was a man selling gas balloons by the roadside. To draw a crowd,

0: नमस्कार, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
1: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
2: श्रोतियां दी जानकारी ली सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
3: दस लाख दी लॉटरी मेरी, वाह!
4: फसी, फर्जी ऑफर्स तो सावधान।
5: आरबीआई कहंदा है,
6: जानकार बनो, सुचेत रहो।
7: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। शाम दे 4:30 बज रहे ने। हुण असी तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर ले चलदे हां, जिथों तुसी शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे।

हुण तुसी सरवन कर रहे सी श्री दरबार साहब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण। असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 5:30 बज चुके ने। आओ हुण सरवन करते हैं साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार।

आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम, कर आपनड़े खड़ी तका मैं मनचाओ कनेरा राम। सूही राग विच उचारित ए फरमान साहिब श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित है, जिस विच बिरहों कुंठी जीव आत्मा प्रभु दे दर्शना दी अभिलाषा रखदी हुई बेनती करदी है। उस दे हिरदे दी अवस्था प्रभु मिलनी दी तांग दा चितमन है। पंचम पातशाह भी सूही राग विच उचारे हुए शब्द विच ऐसे हिरदे दी अवस्था बयान करदे हुए बचन करदे ने कि हे प्रभु, तेरा दर्शन करके मैनु आत्मिक जीवन प्राप्त हो जांदा है। जेकर हे प्रभु तेरी पूर्ण कृपा होए तां मैनू वी गुरु मिल जावे। मेरी एहो अरजोई सुनो, मैनू अपना सेवक चेला जान के नाम दी दात बख्शो। हे दातार प्रभु, मैनू अपनी शरण विच रखो, क्योंकि विरले मनुखां ने ही तेरे नाल सांझ पाई है। हे मेरे मीता मित्र प्रभु, मेरी बिनय सुनो, आप जी दे सोने चरण कमल मेरे हिरदे विच वस जाण। हे गुणा दे खजाने प्रभु, तेरा सेवक तेरे दर ते तेरे चरणा विच यही अरदास करदा है। दर आया दी लाज रखो, दास नू कदे भी ना विसारो। नानक एक करै अरदास, विसर नाही पूरन गुणतास। आओ सरवण करिए बीबी बलजीत कौर ते उना दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन करम होए

प्रभ मेरा। इस शब्द दा गायन कीता सी बीबी बलजीत कौर ते उना दे रागी जत्थे ने। सुन वड्डा आखे सब कोई, के वड़ वड़ा डीठा होए, कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए, वड़े मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा चेता केवड़ चीरा। प्रभु दी वड्याई बेअंत है, बयान तो परे है, सुन सुन के ता हर कोई उसनू वड्डा कही जांदा है। वो कितना वड्डा है उसनू ही पता है जिसने उसनू वेख्या होवे, उसकी कीमत दा कोई अंदाजा नहीं। जिन्हां ने उसकी वड्याई दस सकनी है वह तो उसे विच ही समा जांदे ने। इसे करके हे प्रभु तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न साखाओ, तू ठाकुर ऊच भगवाना। प्रभु गुणा दा खजाना है, उसकी महिमा दा वर्णन नहीं हो सकता। प्रभु तू सबना दा मालक अते सर्वोच्च है। नामदेव जी भी उस बेअंत प्रभु दे नाम नू ज्ञानहीन मनुख वास्ते सहारा डंगोरी मनदे हुए उसकी उपमा करते हैं। हे प्रभु तू कर्म करन वाला रहमत दा मुजस्मा है, वड्डा है, साई है, हाजिर नाजर है, अंग संग है, दया दा सागर है, देहंद भाव देवनहार है, धनी है। असी तां दाता लैण वाले जीव हाँ, पर देण वाला दाता तू ही है, होर कोई नहीं दिंदा। तू दाना स्याणा है।

0: तू सब कुछ देख रहा है, मैं तेरे बारे की विचार करा। हे नामदेव दे स्वामी, तू बख्शणहार है। सुनदिया डॉक्टर मनदीप सिंह होरां पासों वार्ता, तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी।
1: भगत नामदेव जी परमात्मा अगे बेनती करते हैं कि हे प्रभु, तू सब दे दिलां दी जानण वाला है, सब कुछ वेखण वाला है। तेरी महिमा बेअंत है, मेरी छोटी जही बुद्धि तेरे गुणा का पूरा वर्णन किवें कर सकती है। मैं तेरी वडियाई का अंत नहीं पा सकता। भाव के परमात्मा का निराकार स्वरूप अते उस दी महिमा इतनी व्यापक है कि वह बुद्धिमंडल के घेरे विच नहीं समा सकती, क्योंकि साधारण बुद्धि परमात्मा की निराकारता अते विराटता नू समझण दे समर्थ नहीं है। अजिही विराटता नू कह सकना भी संभव नहीं, क्योंकि साकार रूप दे दीदार हुंदे हन अते निराकार रूप दा दर्शन हुंदा है। परमात्मा दे निराकार रूप अते सहज अवस्था दी कथा अकथ अते निराली है। गुरबाणी विच वार वार आया है, आखण औखा साचा नाओ, नानक कथना करड़ा सार। आवह संतह प्यारे हो, अकथ की करह कहानी। जदों मनुख परमात्मा दी इस व्यापकता अते स्वय दी समर्था नू जान लेंदा है, तां उस दे मन दी गति स्थिर हो जांदी है अते आत्मा आपे विच आपे दा रस लैण लगदी है। इस शब्द दा केंद्री सूत्र है कि हे मेरे मालक, तू सारिया ही उत्ते बख्शिश करन वाला है, दयावान अते मेहर करन वाला हरी है। इस शब्द दी पहली पंक्ति विच दो प्रसंग उभरदे हन। पहला है तू दाना तू बीना, भाव कि परमात्मा सब कुछ जानदा है। भगत नामदेव जी फरमाउंदे हन कि प्रभु सब दे मन दी जानण वाला है। यही विचार गुरु अर्जन देव जी भी प्रगट करदे हन। ठाकुर तुम सरबत जानिया, भाव कि हे प्रभु, तू सब थावां ते मौजूद है अते सब कुछ जानण वाला है। प्रभु अंतर जामी है, मन दियां अंदरलियां भावनावां नूं भी जानदा है। अंतर जामी पुरख विधाते, शरदा मन की पूरे। दसम पातशाह भी फरमाउंदे हन, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। इस वाक दा दूसरा प्रसंग है मैं विचार क्या करी, भाव कि प्रभु दी महिमा बेअंत है। भगत नामदेव जी अपनी असमर्था प्रगट करदे हन कि हे प्रभु, मैं तेरी महिमा किवें बयान करां। इसे भाव नूं जपजी साहिब विच गुरु नानक देव जी इउं कहिंदे हन, कथना कथी ना आवै तोट, भाव कि प्रभु दी वडियाई अते सिफत सालाह कहिंदे कहिंदे भी खत्म नहीं हुंदी। इसे तरह अगे फरमाउंदे हन, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै ना ही को थाओ, भाव कि सारी सृष्टि उस दी महिमा दा ही प्रगटावा है। जिवें कोई बच्चा समुंदर दे कंडे खड़ के एक कप पानी दा भर लवे, पर उह समुंदर दी डूंघाई नहीं माप सकदा, इसे तरह मनुखी बुद्धि प्रभु दी बेअंतता नूं पूरी तरह समझ नहीं सकती। इसे तरह दा शब्द आसा दी वार विच भी मिलदा है, तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहा। भाव के हे प्रभु, तू एक विशाल दरिया समान है, मैं तेरे ही पीतर रहन वाली एक मछली समान हाँ। मैं तेरा आद अंत नहीं लभ सकती, मैं तेरी व्यापकता नू नहीं जान सकती। तू ही सदा मेरी हालत जानदा है, मेरी होंद तेरी मेहर सदका है। भगत नामदेव जी दे इस शब्द दी अगली पंक्ति है, नामी चे स्वामी बखसंद तू हरी। बखसंद तू हरी तो भाव है कि प्रभु बख्शणहार है। गुरबाणी विच वार

0: मेरी मत थोरी राम। भाव कि हे प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, मेरी अकल बहुत छोटी है। तेरे गुण गावा देह बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई। हे प्रभु मैनू समझ बख्श कि मैं तेरे गुण गा सका। अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार। गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु की रचना अते महिमा का कोई अंत नहीं पाया जा सकता। इस शब्द तो सानू सिख्या मिलती है कि परमात्मा सरबग है, भाव सब कुछ जानण वाला है। परमात्मा सर्वव्यापक अते सर्वदृष्टा है। मनुख की बुद्धि सीमित है, वह परमात्मा की पूरी महिमा का अंत नहीं पा सकती। प्रभु की बख्शिश अते कृपा तो बिना आत्मक उचाई प्राप्त नहीं हुंदी। ये शब्द सिर्फ परमात्मा की सरबगता का बयान नहीं, सगों भगत की निम्रता, आत्म समर्पण अते प्रभु की कृपा उत्ते पूर्ण निर्भरता का प्रगटावा भी है। इसलिए मनुख लई हंकार छड़ के परम पिता परमेश्वर की कृपा का आसरा लेना ही सच्ची भगती है। ये समझ लेना चाहिदा है कि सारे भौतिक वरतारियां अते पसारियां दी वास्तविकता तो इलावा एक होर वास्तविकता भी है, जो काल दियां बंदिशां तो बाहर सुतंत्र अते सदीवी है।
1: तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी। ये वार्ता सुना रहे सन डॉक्टर मनदीप सिंह। निरसंदेह परमात्मा दी बेअंतता अगे सारे नतमस्तक हैं। वह प्रभु अत वड्डा अत उच्चा है, जिसका पारावार नहीं है। सूही राग विचले शब्द विच बेअंत प्रभु की वड्याई कर सकन बारे असमर्थता प्रगटाई गई है कि हे मेरे सोने प्रभु, मैं तेरी कीमत वड्याई नहीं जान सकता। तू ते सर्वव्यापी है, सर्व निवासी है। जल धरती आकाश सबनी थाई पूर रहा है। वो केड़ी तकड़ी है, केड़ा वट्टा है, ते वो केड़ा सराफ है जो आप बारे जान सके। मैं केड़े गुरतामो ये सब कुछ साधन दी विधि सिखा कि तेरी कीमत जान सका। जे मैं मन नू तकड़ी बना लवा, चित नू भार तोलन वाले वट्टे मन लवा, तेरी भजन बंदगी करके तेरे बारे जानन दी कोशिश करा, तां भी ये संभव नहीं। मैं तो मन अंतर ही तेरी सिफत सलाह कर सकता हाँ, मन राजी रख सकता हाँ। हे प्रभु तू आप ही तोलन हारा, आप ही तकड़ी, ते आप ही अपनी वड्याई जानता है। तू आप ही सब कुछ देखता है ते जानता है। आपे ही प्रभु तू वणजारा है। मैं ज्ञानहीन, मैं नीमा, मैं आवागमन विच फसया परदेसी दी न्याई हाँ। मैं मूरख तेरी संगत तो बिना, तेरी शरण तो हीणा, किवें तेरी था पा सकता हाँ, किवें तेरी महिमा जान सकता हाँ। मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, तू जल थल महियल भरपुर लीणा, तू आपे सर्ब समाणा। सरवण करदे हां भाई गोपाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता है।

मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, तू जल थल महियल परपुर लीना, तू आपे सर्ब समाणा। इस शब्द का गायन किया सी भाई गोपाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल ऐप से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है। पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने अब तक 3 रजत और 2 कांस्य पदक समेत 5 पदक जीत लिए हैं। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर लंबी छलांग लगाकर रजत पदक जीता। स्क्वाश में अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स में और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में रजत पदक हासिल किया। डेकाथॉनल में तेजस्विनी शंकर ने और महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किए। फ्रीस्टाइल मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में तजाकिस्तान के नेक्रोज सलीमों को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया। महिला वर्ग में परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग के अंतिम 4 में जगह बनाकर

जन सेवा से देश सेवा। प्रोग्राम फगदे पाणी दा समा रहेगा 7:45 दा, जिस दे तहत तुसी अज परमजीत सिंह दी कहानी पूर्ण अपूर्ण प्यार सुनोगे।

0: जी संधु साहब लांगा ये
1: आजो आजो लांगाओ पांच साहब लांगाओ।
0: आगे जी। हाँ जी, जय हिंद महाराज।
1: जय हिंद जी, जय हिंद पंच साहब जी आया नू।
0: होर सुनाओ, ठीक ठाक हो?
1: बहुत वधिया,
0: ते किथे अजकल तोरे फिरे हो रहे ने, सैर सपाटे हो रहे ने थोड़े?
1: बहुत जरूरी आ। देखो अपना जे तुसी घरों बाहर निकलोगे ते दुनिया जिहड़ी हैगी भांत भांत दी तुहानू देखण नू मिलदी हैगी
0: बिल्कुल
1: है।
0: मिलती है, भांत भांत की बोली सुनने मिलती है,
1: हाँ
0: पहरावा देखने मिलता है,
1: हाँ खाण पान मिलता
0: खान
1: है,
0: पान, हाँ
1: लोग मिलते हैगे आ,
0: लोग मिलते,
1: सभ्याचार मिलता हैगा।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: ते जिहड़ा अपने जिहड़ा कहिंदे कि सभ्याचार दा आदान प्रदान भी हुंदा हैगा। हांजी, कुछ
0: हाँ
1: चीज़ां आपां उन्हां नू दे के आउने, कुछ उन्हां तों लै आउने।
0: लै आने असीं, सीखते भी हैं नवीं चीज़ां पे, इन्हां कोला
1: हाँ
0: वधिया चीज़ां।
1: सो इस करके घूमना फिरना जिहड़ा है ना, ये भी अपने आप च एक कला है जी।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: हाँ जी, तो
0: साढ़े इधरों लोग जाते ने भी माड़ा जहा मौसम तत्ता होया नहीं तो चलो पहाड़ा च
1: बाड़ा
0: तन
1: च तुर
0: सारा
1: पैंदे
0: पाई
1: हैं।
0: जाओ, है ना?
1: हाँ हाँ
0: ये चंगी गल भी है, जाना आना चाहिए, है ना?
1: हाँ
0: पर
1: बहुत
0: यह भी
1: वधिया
0: उठे
1: जी,
0: उठे जा के थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना
1: रखना
0: पड़ेगा, है ना?
1: चाहिए जी।
0: हाँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं कहना पंच साहब भी वधिया छाप छड़ के आइए,
0: छड़ के आइए,
1: तानू
0: बिल्कुल
1: लोग
0: सही कहा,
1: याद करन,
0: याद करना।
1: ना कि आप कोई माड़ा जरा आप कहने इंप्रेशन होते पा के
0: हाँ,
1: आइए।
0: बिहार हो जा रखिए भी, लोग कह के यार पंजाबी आए सी,
1: आई
0: क्या
1: सी
0: बात है,
1: आई सी
0: ये ना कह
1: बिल्कुल।
0: के आए सी पंजाबी।
1: हुण देखो ना पंच साहब कि घूमन फिरन दे कई बहाने हो जाते हैं है।
0: हाँ, बिल्कुल
1: कोई लोग अपने माता के दर्शनों वाल चले जाते भी, चलो इस बहाने माता के दर्शन भी कर आए,
0: हाँ जी,
1: नाले
0: हाँ जी,
1: सैर भी हो गई, कुछ खरीददारी भी हो गई। हाँ
0: हाँ
1: जी, ते ये नाल देखो कई कारोबार भी चलते हैं।
0: हाँ,
1: ये
0: बिल्कुल
1: किन्नी
0: सही
1: अच्छी
0: कहा।
1: खूबसूरत गल हैगी है कि तुसी जाने हो कितने, रहने हो कितने, खाने हो कुछ चीज़ लैने हो, ते उदा परिवार भी तुरदा है जी, उदे नाल
0: हाँ,
1: खर्चा
0: बिल्कुल
1: तुरदा है।
0: बिल्कुल तुरदा। वैसे असीं तो पंजाबी खाण पीण के शौकीन ज़्यादा होंने ना, तो असीं बाहर जाके तो यही लभदे भी नवीं चीज़ कि असीं सीख के आईए इतों, जिड़ी
1: हाँ
0: इन्हां दे कोल खास है, फिर इतने आके आप अपनाइए, है ना?
1: बनाइए।
0: तो खाइए तो
1: हाँ
0: खवाइए।
1: हाँ सो इस करके हुण देखो कि कई लोग ये भी कोशिश करते हैं भी घरां दे विच कोई इस तरीके का समान या कमरा बना लो, तो आमदन का जरिया बन सकता है।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: अच्छा पंच साहब, हुण जिहड़ा समां आ कि सर्दियां वास्ते जिहड़ियां सब्जियां बिजाई करनियां
2: जी जी,
1: ते मटरां दी काश्त बारे ना डॉक्टर हीरा सिंह होरां ने कुछ जानकारी दित्ती है।
2: ठीक है जी,
1: लो सुनो फिर
2: जी।
3: किसान वीरो, अज असी गल करांगे मटरां दी कास्त बारे। मटर ठंडे मौसम दी मुख फसल है। ये पंजाब विच इक अहम सब्जी दी फसल है, जो कि तकरीबन 1,10,000 एकड़ विच उगाई जांदी है। तो इस तो असी 4,60,000 टन दे करीब मटरां दा उत्पादन करते हाँ। इस नूं 20-25 डिग्री तापमान दी जरूरत हुंदी है। जेकर इस साड़ी बिजाई ज़्यादा तापमान जिमें कि 30 डिग्री तो उपर हो, बूटे उगन सार ही मर जाते हैं। किस्मों की गल करिए, यूनिवर्सिटी वालों 3 किस्मों की सिफारिश की जाती है। 2 अगेतियां ते 1 मुख मौसम की। अगेतियां दे विच किस्मों विच मटर अगेता 7 अते AP3 है। मटर अगेता 7 दे बूटे ते तकरीबन 15-18 फलियां लगदियां ने, ते 7-9 दाने होंदे हन, ते इहदा साइज़ तकरीबन 9-10 सेंटीमीटर होंदा, ते इस दा झाड़ 32 क्विंटल प्रति एकड़ है। और इस दी पहली तड़ाई असी 65-70 दिनां दे विच कर सकते हाँ। दूसरी वरायटी साडी किस्म है जो अगेती कैटेगरी दे विच है, वह है AP3। ये भी तकरीबन 65-70 दिन पहली तड़ाई लई लैंदी आ।

0: रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर के एस वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा सक्सेना और आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और आज साल 2026 में उनके 25 वर्ष पब्लिक गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में पूरे हो चुके हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसमें से सबसे बड़ी एक चुनौती जो थी वो साल 2001 में गुजरात में भुज में आए अर्थक्वेक की थी। तब शायद उन्होंने ये सीख ली थी कि कैसे डिजास्टर से ना सिर्फ निपटा जाए बल्कि आगे आने वाले डिजास्टर के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर किया जाए। तो आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो भी यही है, संकट से समाधान तक। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही अहम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर कृष्णा एस वत्स, ही इज मेंबर एंड HOD NDMA एंड श्री अमित प्रोथी, DG CDRI। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वत्स, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि साल 2001 में जो गुजरात में कच्छ को जिसने इम्पैक्ट किया, जिस अर्थक्वेक ने, उसमें काफी लोगों की जान गई, काफी लोग इम्पैक्टेड हुए, काफी लोगों के घर बर्बाद हो गए, तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है डिजास्टर की दिशा में जब भारत ने अपने कदम उठाए, तो आप क्या हमें ये समझा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में कैसे डील किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और ना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको आगे कैसे रेजिलिएंट बनाया जाए उस पे काम किया।
2: करीब करीब 12,000 लोगों की जाने गई थी और बहुत बड़े क्षेत्र में आर्थिक और बिल्डिंग्स का जो नुकसान हुआ था, घरों का नुकसान हुआ था, तो यह गुजरात के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत बड़े संकट की घड़ी थी और इसमें पूरे देश की तरफ से जो रिस्पांस आया था, सारे राज्यों ने मदद का हाथ बढ़ाया था और इसके साथ साथ बहुत सारे देशों से भी मदद मिली थी। तो पहला तो था कि बहुत बड़े क्षेत्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके साथ साथ फिर लोगों को जो तात्कालिक जो मदद देनी होती है वह दिया गया, लोगों को जो टेम्पररी शेल्टर में रखा गया क्योंकि घरों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, स्कूलों के गिरने से बहुत बच्चों के भी डेथ हुए थे, तो पूरा राज्य सरकार जुट करके लोगों की मदद कर रहा था और लोगों को सारी जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की, खाने पीने की, रहने की, ये सारी सुविधाएं, पीने के पानी की, मैं उस समय था वहां पर और मैं देख रहा था कि राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी से सारा कुछ जो रिलीफ है और उसका काम किया था। साथ साथ जो है वो एक उस समय यह भी एक चुनौती थी कि इस पूरे का पुनर्वास कैसे किया जाए, रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक बहुत बड़े आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी और उसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी मदद ली गई थी और उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। लेकिन इसकी जो तैयारी है उसमें काफी कुछ नीतियों का बहुत बड़ा योगदान था कि एक तो जब हम लोगों का पुनर्वास करें तो अच्छे से करें, लोगों को बेहतर घर मिले, भूकंप प्रवणता का ध्यान रखें और साथ साथ जो है सो लोगों को रोजगार के भी बेहतर अवसर मिले, इस क्षेत्र में एक इन्वेस्टमेंट आए तो इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, आर्थिक रूपांतरण हो। कच्छ जो है वह कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहां सूखे की प्रवणता ज्यादा रहती है, तो कच्छ का आर्थिक रूपांतरण भी हो उसकी ओर भी उतना ही ध्यान था। तो लोगों का पुनर्वास, एक पूरे क्षेत्र का आर्थिक रूपांतरण और साथ साथ लोगों को किस तरह से फिर से अपने पैर पर खड़ा करना और एक राज्य को आगे आने वाली आपदा से मुकाबला करने के लिए ज्यादा सक्षम बनाना, ये सारी चुनौतियां थी। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री भी उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नेतृत्व इसके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा।
1: यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर प्रोथी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम ग्लोबली फिगर्स को देखें तो लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल इफेक्ट

0: होते हैं किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर से। जैसा डॉक्टर वत्सा ने अभी हमें बताया, प्रधानमंत्री की वो दूरदर्शी सोच ही है जिसने 2019 में CDRI की स्थापना को जन्म दिया, CDRI का जन्म हुआ। तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आखिर CDRI को बनाने के पीछे की सोच क्या थी और CDRI का काम एक्चुअली में है क्या?
1: आई थिंक जैसे कृष्णा जी ने बताया कि जो कच्छ में एक्सपीरियंस हुआ उसमें बहुत साफ साफ दिखने लगा कि जैसे भूकंप आता है, साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, इसमें लोगों को भी काफी डेथ्स भी होती हैं, डिफिकल्टीज भी होती हैं, लेकिन जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काफी भारी डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो और ये हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा इंडिया में तो हमने देखा है, लेकिन अब पीछे नेपाल में भी देखा है, कोलंबिया में भी भूकंप आया है। लोगों पे इन इवेंट्स की जो चैलेंज आते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी आते हैं, जैसे घर कैसे बनाया जाए, जैसे सड़कें कैसे बनाई जाए कि गिरे ना, जैसे पानी चलता रहे, बिजली चलती रहे,
0: नॉर्मल लाइफ, इन
1: फैक्ट नॉर्मल लाइफ बेसिकली चलती रहे। इनफैक्ट 23 सितंबर, एग्जैक्टली 7 साल हो गए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कोलिशन को न्यूयॉर्क में अनाउंस किया था कि भारत ग्लोबल लीडरशिप दिखाएगा कि कैसे हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको इस तरीके से बनाया जाए कि हम ये जो लॉसेस आ रहे हैं साथ साथ में उसको अवॉइड कर सके। अब हमारे करीब 59 देश इस कोलिशन के मेंबर बन चुके हैं एंड वो हमसे 3 चीजें पूछते हैं। हम जो सेक्रेटेरिएट हैं कोलिशन के, हमको 3 सवाल आते हैं। एक कि अभी मैंने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें किस तरीके से बनाया जाए कि ताकि कल का जो भूकंप आएगा या कल जो साइक्लोन आएगा वो मेरा सर्विसेज को डिस्ट्रप्शन ना करे, मेरी बिजली आती रहे, लाइफ चलती रहे, एक वो है। दूसरा है कि लोगों पे जो इम्पैक्ट है उस पर किस तरीके से ऐसे ध्यान दिया जाए कि वो इम्पैक्ट ना हो और अगर है तो बहुत जल्दी उससे रिकवर किया जाए। और तीसरा, अगर इसमें जो पैसा जाता है बाद में जब डिस्ट्रक्शन के बाद जो पैसा जाता है उसको किस तरीके से पहले अवॉइड किया जाए,
0: तो एक्सपेंसेस
1: को, लॉसेस को। तो हमको पता है कि इवेंट्स तो आएंगे, भूकंप आएंगे, बाढ़, बारिश भी आती है, गर्मी भी आएगी और साइक्लोन्स भी आएंगे, लैंडस्लाइड्स भी आएंगे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे ना गिरे, घर ना गिरे, डिसरप्शन ना हो, उस पे कैसे काम किया जाए वो हमारा सबसे ज्यादा मेन फोकस है। एंड बिकॉज अब हम बोलते हैं कि हमारे इतने सारे देश मेंबर्स हैं तो इनसे एक दूसरे से सीखा कैसे जाए, बिकॉज हर देश में कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है, उसको किस तरीके से शेयर किया जाए ताकि जिस देश को जरूरत है उसको बड़ी जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस तरीके से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व कर सकते हैं। तो वो भी कोलिशन का जो एक आइडिया है कि एक दूसरे से कैसे सीखा जाए और शेयर किया जाए एक्सपीरियंस, ताकि जो गलतियां हम कर चुके हैं या कोई और कर चुका है उसको अवॉइड कैसे किया जाए।
0: डॉक्टर वत्सा, जब 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था उसके बाद ही GSDMA का भी जन्म हुआ था, उसके पीछे का सोच क्या था और शायद अर्थक्वेक ने एक सीख दे दी कि आगे काम को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे प्लान्ड मोड में किया जाए, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
2: क्योंकि वो पुनर्वास का जो स्वरूप था वो इतना बृहद था कि उसके लिए आवश्यक था कि एक विशेष व्यवस्था की जाए और वह विशेष व्यवस्था GSDMA गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हुई। एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फिर से अपने जीवन में पुनर्स्थापित करने का था। तो GSDMA की स्थापना हुई, GSDMA की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुई, तो राज्य सरकार ने एक ना उसके लिए लेजिस्लेशन लाया और फिर GSDMA का एक किट, कई विंग्स थे, कई जो शाखाएं थी जिनके माध्यम से ये पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। तो करीब करीब ये जो प्रोग्राम था वो कई हजार करोड़ों का था, मतलब मैं अगर वर्ल्ड बैंक और ADB की मदद मिली और अन्य संस्थाओं की मदद मिली तो करीब करीब वो $2 बिलियन के आसपास का यह प्रोग्राम था। तो काफी बड़ा प्रोग्राम था और इसलिए वो आवश्यक था कि इस तरह की संस्था बनाई जाए और उनके माध्यम से पूरा इसका कार्यान्वयन हो और फिर GSDMA फिर आगे भी चला और वो अभी भी है। GSDMA के बाद राज्य में एक नया कानून डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी लाया गया, वह भी माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह भी संभव हुआ और इन सब के कारण गुजरात में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की जो संकल्पना है वह काफी मजबूत हुई। पूरे राज्य में जो रिस्क असेसमेंट का काम लिया गया और भी जो साइक्लोन के लिए जो तैयारियां होती हैं, गुजरात में 1996-97 में शायद है ना कांडला का साइक्लोन

0: लगातार काम होते रहता था और गुजरात सरकार बड़ी सक्रियता से इसको देख रही थी और उनके नेतृत्व में उस समय 95 मीटर पर बना, फिर 110 पर बना। तब मैं वहां था और मैं देख रहा था कि गुजरात सरकार इसको पूरी अच्छे से संभाल रही थी और डैम का हाइट ऊपर गया, फिर नर्मदा का डैम फिर बाद में 137 मीटर पर भी पहुंचा। और नर्मदा के कारण जो पानी की उपलब्धि हुई राज्य को, उसका सूखा प्रवण क्षेत्रों पर काफी उसका ना अच्छा परिणाम हुआ। आज बहुत सारी जगह क्षेत्रों में जो पानी की उपलब्धता है वो नर्मदा में बने डैम के कारण है। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो प्रतिबद्धता थी नर्मदा डैम के बारे में, तो उसके कारण राज्य के पानी की उपलब्धता पर काफी ना अच्छा परिणाम आया।
1: मिस्टर प्रोति, अगर हम CDRI की बात करें, पानी रिलेटेड कोई डिजास्टर आता है स्पेसिफिकली, क्योंकि फ्लड्स की दिक्कतें भारत में होती हैं मॉनसून के सीजन में, उसमें CDRI का क्या रोल रहता है?
2: हाँ, तो इनफैक्ट आज ही हम NDMA के साथ एक वर्कशॉप कर रहे हैं जहां पर देखिए हमारा काम है एक्सपर्टीज लाना डिफरेंट देशों से। और बाढ़ का जो आपने बात किया है, बाढ़ एक्चुअली बहुत ही चैलेंज रहेगा स्पेशली शहरों में, क्योंकि हम शहर बड़े जल्दी बन रहे हैं, हमारे बारिश के जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, तो उनको समझना आसान नहीं है। तो हमने क्या किया है कि अभी हम नेदरलैंड्स गवर्नमेंट है, नेदरलैंड्स काफ़ी देश दुनिया में माने जाते हैं कि उनको पानी मैनेज जो करना है उसको बहुत अच्छी तरह आता है। वो 8 साल से, अगर आप उस देश के बारे में सोचें, वो देश समुद्र के नीचे लेवल पे है, तो उन्होंने बहुत अरसों से पानी को मैनेज करना पे काम किया हुआ है। तो हम ये कर रहे हैं कि एक्सपर्टीज जैसे नेदरलैंड्स में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी देशों में है, उसको किस तरीके से जल्दी से भारतीय इंस्टीट्यूशंस के साथ मिला के थोड़ा सॉल्यूशंस देखे जाएं हमारे शहरों के लिए। अब जैसे हम शहर जब बना रहे हैं तो एक तो उसमें ड्रेनेज जो डालनी है, अगर हम उसको ढंग से डाल रहे हैं, उसमें उसका साइंस क्या है, वो सब उसको इम्प्रूवमेंट कुछ कर सकते हैं वो देखना है। कई जगहों पे आपको पूरा ड्रेनेज की डालने की ज़रूरत ना पड़े, और कोई इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जैसे अब बैंकॉक ने एक पूरा पार्क बनाया है, पब्लिक पार्क, जो फ्लड के लिए भी काम आता है। इन्होंने इस पार्क को इस तरीके से बनाया है कि जब आपका पानी एक्सेस पड़ता है, बिकॉज बाढ़ क्यों आती है, बिकॉज आपको पानी की जगह नहीं है कहीं जाने के लिए, इन्होंने पार्क इस तरीके से बनाया है कि उसमें जब पानी एक्सेस है वो पार्क के अंदर जाके बैठ जाता है एंड धीरे धीरे धीरे चला जाता है, एंड जब वो पार्क की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती, वो पार्क है, लोग खेल रहे हैं वहां पर। सिंगापुर ने भी ये ट्राई किया है, न्यूयॉर्क भी ट्राई कर रहा है, काफी सूरत ने भी इनफैक्ट थोड़ा बहुत इस पे काम थोड़ा करना शुरू किया है। जब पानी को संभालना है शहरों में, उस पानी को किस तरीके से देखा जाए कि उसको सिर्फ ड्रेन में डाल के बाहर निकालना नहीं जाए, बिकॉज उसका कॉस्ट काफी होता है, और कोई भी तरीके हैं, जैसे इनको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के नाम पे ये पूरा एजेंडा है जो इस कि जो नेचुरल सिस्टम को समझ के अगर आप पानी को मैनेज कर सकते हैं, तो वो सोच जो है वो हम धीरे धीरे इंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से सीख के लाया जाए। और बाढ़ का काम अभी, क्योंकि हमारे शहर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, इस पर काफ़ी अटेंशन हमने पे करना है, और NDMA के साथ हम इस पर थोड़ा काम भी कर रहे हैं।
1: इनफैक्ट, क्योंकि डॉक्टर वत्सा, हम अभी पानी की बात कर रहे हैं, और अगर मैं वापस जाऊं गुजरात पे, तो वहां पे एक तरफ सुजलाम सुफलाम और सोनी जैसी लार्ज स्केल वाटर इंटरवेंशंस हैं, और दूसरी तरफ चेक डैम्स हैं, फार्म पॉन्ड्स हैं, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे लोकल इंटरवेंशंस भी हैं। तो गुजरात का ये जो इंटरवेंशन है, गुजरात का जो ये मॉडल है, क्या देश में बाकी स्टेट्स भी इससे कुछ सीख ले रहे हैं?
0: सारी जगह जो है सो ये लोकल लेवल पर जो पानी की उपलब्धता है, फार्म पॉन्ड्स जो हैं, है ना, जिसको हम खेत में जो तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं और जिसके कारण जल का संवर्धन होता है, उस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, है ना, और ग्राउंड वाटर को कैसे हम रिचार्ज कर सकें, इसकी ओर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। और इसके कारण देखिए, इस साल भी हमारे यहाँ पानी काफ़ी कम हुआ, बारिश काफ़ी कम हुई इस साल, करीब करीब 15% का डेफिसिट था, लेकिन चूंकि स्थानीय स्तर पर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ रही हैं, इसके कारण खेती पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। मैं नहीं कहूँगा कि खेती पर असर नहीं पड़ा है, टोटल जो एरिया है

0: पहले प्रायोरिटी में आप कौन से नेचुरल डिजास्टर को रखते हैं और उसके बाद उससे डील करने का तरीका क्या होता है?
1: सो आई थिंक पानी का सबसे बड़ा है एक्चुअली. अगर हमने डेटाबेस एक डाला है 3 साल पहले कि ग्लोबली सबसे बड़ा रिस्क किसका है, वो फ्लड्स का ही आता है, भूकंप का भी आता है, उसके बाद फिर साइक्लोन आता है, अब गर्मी का भी शुरू हो गया है. अब हीट वेव लेकिन एक्सट्रीम हीट. अब हीट वेव क्या होता है कि अब हमको पता है दिल्ली में गर्मी आती है 45-50 डिग्रीज का टेम्परेचर पहुंच जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस पर क्या इम्पैक्ट आता है? आपकी यू नो एसी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, बिजली की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, आपका सिस्टम उस टाइम काम ना करे, हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत. तो ये सब चीज़ें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं. फ्लड्स तब भी सबसे आई थिंक 8 out of 10 आपके फ्लड्स के ही डिज़ास्टर सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाकी की भी जब भूकंप आता है तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है उसकी. जब भूकंप आता है वो कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो फिर बहुत डिस्ट्रक्ट करते हैं. फ्लड्स रेगुलरली आ रहे हैं, उन पे डिस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है, लेकिन उस पे अब काम इस तरीके से हो रहा है कि कल को पता है पानी में वेरिएबिलिटी आएगी, प्रेसिपिटेशन में वेरिएबिलिटी आएगी, उसको फ्लड और डिजास्टर ना हो पाए उस पे सोच अभी काफ़ी चल रही है. एंड ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये बाहर देशों में भी इसी पे काफ़ी फोकस आ रहा है. अब आपने यूरोप में भी देख लिया
0: गर्मी
1: बट फ्लड. स्पेन में बहुत बड़ा फ्लड आया है. एक और चीज़ शुरू हो गई है, वाइल्ड फायर. अभी अगेन हमारे भी स्पेन में भी आया है, पीछे लॉस एंजलिस में पूरा, काफ़ी शहर में भी. तो ये सब चीज़ों में जनरली ज़्यादा टेंशन हो रहा है, और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पता लग रहा है कि वी आर नाउ 1 to 2 डिग्रीज वार्मर ग्लोबली. में पिछला साल सबसे गर्म साल था, उसके पहला साल वो सबसे गर्म साल था. तो ये इसकी वजह से वेदर पैटर्न्स भी चेंज आ रहा है, और उसकी वजह से फिर ये वाइल्ड फायर हो गया, अभी ग्लेशियर बेल्ट की भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है. सो ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट इस पे काम भी होने लग गया है काफ़ी.
0: मिस्टर प्रोति, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, जैसे अभी ब्रिक्स का समिट खत्म हुआ, उसके अलावा भी एससीओ मीटिंग हुई, काफी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, और सारे जैसे आपने देशों का नाम लिया, हर कोई नेचुरल डिजास्टर से परेशान है और समाधान ढूंढ रहा है. तो अगर हम मल्टीलैटरल फोरम्स की बात करें तो वहां भारत का नेतृत्व कैसा है, और उसके साथ साथ हमें आगे जाके कोई हमने क्या डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया है कि सारे देश एक पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो करेंगे, या ये एक अनसेड रूल है कोई
1: है? और मैं चाहूंगा कि कृष्ण जी भी इस पे आपकी तरह बात करें. हम सब देशों ने एक सेंडाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है. ये एग्रीमेंट बोल रहा है कि हम सब देश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करेंगे. ये ऑलरेडी है. G20 हुआ था भारत में, उस टाइम भारत ने G20 फोरम में बोला कि हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मुद्दा में एक वर्किंग ग्रुप डालेंगे. इंडिया ने लीडरशिप ली, उसके बाद ब्राज़ील ने उसको फॉलो किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने उसको फॉलो किया, और CDRI को इस गर्व से मैं बोलूँगा कि हम 7 साल भी नहीं हुए हमें इस्टेब्लिश हुए, लेकिन हम इन तीनों फोरम में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन सब ग्रुप्स के नॉलेज पार्टनर थे. अब आगे अगले साल सेंडाई पे भी चर्चा हो रहा है कि सेंडाई को भी अब थोड़े टाइम आ चुका है, उसको फिर से देखना है कि एग्रीमेंट में चेंज आए. इसमें भी अब भारत लीडरशिप दिखा रहा है, और सेंडाई का एक टारगेट है, 4 टारगेट्स में से एक टारगेट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे है. उसमें हम जरूर भारत के साथ काम करके और बाकी देशों के साथ काम करके बोलेंगे कि इसमें क्या एग्रीमेंट दिखना चाहिए, ताकि अगले जो 10 साल है उस पे किस टाइप से फोकस हुआ जाए, उस पे हम जरूर अपनी नॉलेज लाएंगे वगैरह, उसको सपोर्ट करेंगे.
2: तो ये जो है कई क्षेत्रों की ओर अमित जी ने अपना ध्यान खींचा है. एक तो जैसे उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट फायर पर, तो फॉरेस्ट फायर के लिए हमने एक अलग से कार्यक्रम शुरुआत की है. अभी वो है ना 15 राज्यों में वो कार्यक्रम अभी चल रहा है. तो हमने जो है फॉरेस्ट फायर के इमीडिएट रिस्पांस के लिए और उनके जो लॉन्ग टर्म जो मिटिगेशन है उसके लिए, दोनों के लिए को इस कार्यक्रम में शामिल किया है. और इसके कारण मुझे लगता है कि जो फॉरेस्ट फायर का जो स्वरूप आपको कई देशों में बाहर दिखने को मिल रहा है, भारत में इसमें काफ़ी कमी आई है और काफ़ी नियंत्रण हमने किया है. जो हमारे NDRF के बटालियंस अभी इसके लिए ट्रेंड हैं, हम जो फॉरेस्ट में वाटर बॉडीज को क्रिएट कर रहे हैं.

0: हम फायर लाइंस को और इम्प्रूव कर रहे हैं. तो इन सब के कारण ये जो हमने कुछ स्टेप्स लिए, इंडियन एयरफोर्स अब मदद करती है. अच्छा. जब भी कभी फॉरेस्ट फायर होता है और एक विशेष सीमा से बाहर जब चला जाता है तो इंडियन एयरफोर्स की, तो हमारा फॉरेस्ट फायर पर थोड़ा बेहतर नियंत्रण हुआ है ये मैं कहूँगा. हीट वेव की बात हो रही है कि तापमान बढ़ रहा है, तो हीट वेव पर भी हम आज हमारे पास 300 से ज्यादा हीट एक्शन प्लान्स हैं पूरे देश में. कई शहरों ने बनाए हैं, कई जिलों ने बनाए हैं. करीब करीब 23 ऐसे राज्य हैं जहां हीट वेव होती है, लू की घटनाएं होती हैं ज्यादा, तो उन सबों ने ये हीट एक्शन प्लान बनाए हैं. तो हीट एक्शन प्लान के कारण भी थोड़ी जन जागरूकता बढ़ी है, लोगों का थोड़ा इस पर ध्यान गया है, प्रशासन का स्थानीय स्तर पर ध्यान गया है. और इसके कारण जो हीट वेव के कारण जो होने वाली जो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम है उसमें थोड़ी कमी आई है. मैं ये नहीं कहूँगा कि है ना हम बिल्कुल हमें, लेकिन सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा हमारा इस पर हमें सफलता मिली है और हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. और इसका मुख्य कारण इन सब चीज़ों का ये है कि एक थोड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक मिटिगेशन फंड हमने बनाया, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर मिटिगेशन फंड बनाया. तो हम सिर्फ अब जो है रिस्पांस की ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम जो दीर्घकालिक उपाय हैं उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं. और ये सब बहुत हाल के वर्षों में हुआ है, ये पिछले 5-6 वर्षों में, 7 वर्षों में ये सब कुछ हुआ है. और इसके कारण जो है हम सारे आपदाओं से निपटने की तैयारी कर रहे हैं. तो हमारा ये ध्यान है और इसमें है ना माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया है कि उन्होंने इस मिटिगेशन फंड के लिए जो आवश्यक निधि है वो उसकी ओर उनका हमेशा समर्थन रहा है. और हम सारे डिजास्टर्स के लिए एक हम लॉन्ग टर्म हमने अप्रोच लिया है. और उसी अप्रोच के तहत CDRI की भी स्थापना हुई है जिसके माध्यम से हम जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनको किस तरह से हम ज़्यादा रेजिलिएंट कर सकें, ज़्यादा मजबूत कर सकें, सक्षम कर सकें, इसकी ओर हमारा ध्यान है. तो जो भी है, जो भी प्रकल्प बन रहे हैं उस प्रकल्प में हम किस तरह से जो रिस्क हैं उन रिस्क को फैक्टर करें, उन रिस्क को असेस करें और उन रिस्क के लिए जो आवश्यक उपाय हैं वो किए जाएँ. अभी देखिए हिमालय का जो क्षेत्र है वो थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो गया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके कारण जो है सो ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है. तो ग्लॉफ जैसी घटनाएं जो अभी नेपाल में हुई है, तो ग्लॉफ के लिए भी हमने एक प्रोग्राम लिया है अभी. तो हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं जो हिमालयन राज्यों में, सबका हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, सबकी हम मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं. हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि अगले कुछ वर्षों में हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं सब में हम अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकें, सब में हम मिटिगेशन का कार्यक्रम कर सकें, सबको एक सारे लेक्स को इकट्ठा करके एक हम ऐसा नेटवर्क स्थापित कर सकें जिसके माध्यम से हम सारे लेक्स की अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें. तो यह हमारा प्रयत्न है कि हम एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच रखें ताकि हम आपदाओं पर हमारा एक बेहतर नियंत्रण रह सके.
1: जितना मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ कि अब साइलोज में काम नहीं होता, लोग सारे डिपार्टमेंट साथ आके काम करते हैं. बात हमने 2001 गुजरात अर्थक्वेक से शुरू की थी और चलते चलते बहुत ही ब्रीफ पार्टिंग कमेंट्स में आप दोनों से लेना चाहूंगी. कोई भी आपदा होती है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, आम इंसान इम्पैक्ट होता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उस पे भी क्या कोई काम हो रहा है?
0: हमारे यहाँ एक हम अभी 12 राज्यों में इस पर कर रहे हैं काम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की मदद से. साइकोसोशल काउंसलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं. हमने अभी सिक्किम में जब ग्लॉफ हुआ था तो भी उस समय भी हम वहाँ हम गए थे और वहाँ लोगों को जो जिस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए उसके लिए हमने प्रयत्न किया था. और लोकल लेवल पर किस तरह से हम काउंसलर्स और हम ज़्यादा कर सकें ताकि ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने काउंसलिंग दे दी तो हो गया. हर स्टेट में काउंसलिंग के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए. तो हमारा ये प्रयत्न है कि हम हर राज्य में इस तरह का एक सिस्टम बनाएं और सब जगह आपदाओं के बाद होने वाले जो इस तरह के ना मानसिक स्वास्थ्य पर जो परिणाम होते हैं उसके लिए अभी हम प्रयत्न कर सकें.
2: डॉक्टर, हम एक्चुअली स्कूल्स को देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अभी जैसे गर्मी की वजह से, और ये हमने गाइडलाइंस बनाई हैं ताकि जो सिर्फ भारत में नहीं बट बाहर

0: देशों में भी, कि जैसे स्कूल जैसी जगह को आप किस तरीके से, एक तो उस पर गर्मी कम आए, तो बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाए कि उसमें अगर बाहर का तापमान बहुत गर्म है, अंदर उसको कैसे गर्मी से बचाया जाए। आप कैसे बच्चों को सिखाएं कि पानी ज़्यादा पीजिए या बाहर मत खेलिए या थोड़ा उसमें शेडिंग के साथ काम करिए। तो हमने ये गाइडलाइंस निकाली है ताकि स्कूल जैसी संस्था को गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिन पे किस तरीके से वो उसका तापमान या उसका एटमॉस्फेयर अंदर ऐसा रह जाए और बिहेवियर जो बच्चों का है ऐसा रहे कि वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे जाके बाहर खेल रहे हैं गर्मी में या पानी नहीं पी रहे हैं, या अगर आपका बॉडी में थोड़ा गर्मी आ रही है तो किसी को बता रहे हैं कि थोड़ा कुछ ध्यान दे दीजिए। सो उस पर अटेंशन हमने फोकस ज़्यादा किया है स्कूल्स पे। सिमिलरली हम हॉस्पिटल्स पे भी करेंगे क्योंकि हमारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। हम ये सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इसमें जो यूसेज है दोनों को किस तरीके से देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कम तंगी आए और जो यूज़ उसको कर रहा है उसको भी इन चीज़ों के बारे में ऐसी समझ है कि वो अपने बिहेवियर की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम में ना जाए। सो इस तरीके से कोलिशन देख रहे हैं कि जैसे गर्मी के चक्कर में स्कूल्स हो गए, मेट्रो हो गए, ऐसे ही हम अटेंशन दे रहे हैं जिसमें बच्चों पे एक बहुत, एंड ऑफ द डे बच्चे हमारे यूज़ करते हैं ये सिस्टम्स, तो उनको भी सिखाया जाए कि ऐसे बिहेवियर कैसे आप ध्यान दें, कैसे इसमें आप कंट्रीब्यूट करें कि अगर गर्मी का दिन है कि बाकियों को देख लीजिए। सो इस पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं।
1: डॉक्टर कृष्णा एस वत्सा एंड मिस्टर अमित रोथी, आप दोनों आकाशवाणी के स्टूडियो में आए। बात हमने डिजास्टर से शुरू की थी, लेकिन अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और वही आज के हमारे प्रोग्राम की थीम भी थी, समस्या से समाधान तक। आप दोनों से बातचीत करके हमें काफी कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस स्पेशल एपिसोड ऑन आकाशवाणी।
2: थैंक यू सो मच।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 11वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, संकट से समाधान तक। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर KS वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7:45 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣੋਗੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰਨ ਅਪੂਰਨ ਪਿਆਰ।
5: ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਬੱਬ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾ। ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਸਬੱਬ। ਭਾਵੁਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈ ਪੀਤ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਕਫ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਅਥਰੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਮ ਜਮਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਨੀਲਮ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੀਲਮ ਲਈ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਟਕਵਾਂ ਜਾਂ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੀਲਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰਸ਼ਕ ਦਾ

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर, 100.9 मेगाहर्ट्स, 100.8 मेगाहर्ट्स ते डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा दे जलंधर केंद्र है। 8 बज रहे ने, हुण तुसी सुनोगे माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे देशवासियां लई प्रसारण मन की बात दे पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण, जिस दा प्रसारण आकाशवाणी दे बठिंडा, चंडीगढ़, लुधियाणा ते पटियाला केंद्र वी नालों नाल करनगे।
1: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार, मैनू सितंबर महीने विच एक बार फिर मन की बात विच तुहाडे नाल मुलाकात करन दा मौका मिल रहा है। मैं देश के दे सारे लोगों का स्वागत करता। मन की बात विच असी देशवासियों के दे सकारात्मक यतना नू एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। असी देश दीयां प्राप्तियां बारे गल करते हैं। भारत की एक अजई वड्डी इतिहासिक प्राप्ति दे एक दिन बाद 10 साल पूरे होने जा रहे ने। यह प्राप्ति सर्जिकल स्ट्राइक की है। 10 साल पहले

नमस्कार, ए आकाशवाणी ए। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम विच सर्जिकल स्ट्राइक अते ऑपरेशन सिंदूर नूं भारत दी दहशतगर्दी विरोधी नीति दी एक नवी मिसाल दस्या, कहा कि अगे भी दहशतगर्द हमलों का जोरदार जवाब दिता जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी होर देश के इलाके से कब्जा नहीं करना चाहता, पर किसी खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा से रणनीतिक खुदमुख्तियारी की राखी करेगा। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अज गुजरात के साबरमती स्टेशन तो देश की पहली LNG संचालित रेलगड्डी हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इनफोर्समेंट

0: डिजिटल सेहत विच तेज तरक्की दे युग विच डॉक्टरां विच हमदर्दी दी महत्ता ते जोर दिता। श्री राधा कृष्णन अज तिरुवनंतपुरम विच SUT अकैडमी आफ मैडिकल साइंसिज दे ग्रैजुएशन समारोह नूं संबोधन कर रहे सन। उन्होंने नौजवान डॉक्टरां नूं अपने संचार विच स्पष्ट अते सटीक होण दी अपील की। उपराष्ट्रपति ने दस्या कि विकसित भारत सिर्फ तां ही प्राप्त किया जा सकता है जदों हर पिंड विकसित किया जाए। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अज गुजरात के साबरमती विच 1500 करोड़ रुपए तो वध दे रेल विकास प्रोजेक्टा का उद्घाटन किया, नींह पत्थर रख्या ते शुरुआत की। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नाल साबरमती स्टेशन तो देश की पहली LNG संचालित रेलगड्डी नूं हरी झंडी भी दिखाई। देश की पहली LNG संचालित रेलगड्डी डीजल LNG दोहरे ईंधन प्रणाली की वरतों करती है। इस विच 1400 हॉर्स पावर वाली दो ड्राइविंग पावर कार ने जो रवायती डीजल की खपत नूं करीब 40% घटा सकदियां ने। इस रेलगड्डी की शुरुआत भारत की चुगिरदे पक्षी आवाजाई और जीरो कार्बन निकासी हासिल करन विच एक वड्डी प्राप्ति है। इस मौके ते एक जनतक इकट्ठ विच गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ भारतीय रेलवे पिछले 12 सालों विच वड्डी तब्दीली आई है। श्री शाह ने कहा कि रेलवे विच सालाना डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर तो घट के 108 करोड़ लीटर हो गई है और इस नूं पूरी तरह खत्म करने के यतन जारी ने।
1: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7000 किलोमीटर की छलांग। 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत ते कनेडा अपने दुवल्ले संबंधा नूं चेहरे पद्धर ते लिजाण दी तैयारी कर रहे ने। उन्होंने न्यूयॉर्क विच संयुक्त राष्ट्र महासभा दे मौके ते कनेडा दी विदेश मंत्री अनीता आनंद नाल मुलाकात की। एक्स ते सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्हां चर्चा नूं बेहद लाभकारी दस्या ते कहा कि दोवें देश संबंधा नूं मजबूत करन लई काम कर रहे ने। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रमी कल्चर ऐप और होरां दे संबंध में करीब 442 करोड़ रुपए दीआं चल अते अचल जायदादां नूं अस्थाई तौर पर जब्त कर लिया। यह कार्रवाई पैसे दे हवाला लैण देण की रोकथाम तहत की गई है। डायरेक्टोरेट ने कहा कि जब्त कीतियां जायदादां विच फिक्स डिपोजिट, व्यापारक दुकाना, एक विला अते कई रिहायशी जायदादां शामिल ने। यह जायदादां गेम्स क्राफ्ट टैक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाल जुड़े व्यक्तियों अते संस्थावां दे नां ते सन। भारत ने मनुखी सहायता के हिस्से वजों काबुल के एक सरकारी अस्पताल में जीवन रक्षक दवाइया और डॉक्टरी सप्लाई की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय के बुलारे रणधीर जायसवाल ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को भारत की मनुखी सहायता में सेहत संभाल को तरजीह दी गई है। जापान विच 2026 एशियाई खेडों विच भारत की NC सोजन अरबिली ने औरतों की लंबी चाल विच चांदी का तमगा जितया। मर्दों की उच्ची चाल विच भारत के सर्वेश कुशारे ने चांदी का तमगा हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सारे तमगा जेतुओं नूं बधाई दी है। क्रिकेट विच वेस्टइंडीज ने तिरुवनंतपुरम विच 3 एक रोजा मैचों की लड़ी के पहले मैच विच भारत सामने जीत ले 296 दौड़ा का टीचा रख्या। आखिरी खबर मिलण समय तक भारत ने 31 ओवरों विच 1 विकेट के नुकसान से 202 दौड़ा बना लिया सन। आखिर च खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में सर्जिकल स्ट्राइक के ऑपरेशन सिद्धू को भारत की दहशतगर्दी विरोधी नीति की एक नवी मिसाल दसिया। कहा कि अगे भी दहशतगर्द हमलों का जोरदार जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी होर देश के इलाके से कब्जा नहीं करना चाहता पर किसी खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा से रणनीतिक खुदमुख्तियारी की राखी करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती स्टेशन तो देश की पहली LNG संचालित रेलगड्डी को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इस नाल ही यह बुलेटिन खत्म होता है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन सवेरे 8:30 बजे होगा। नमस्कार।
2: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ सुनते हैं हरभजन मान दा गाया एक गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता

0: मुखातिब किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने विमेंस लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, विमेंस स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: श्री मोदी ने लोगों से मेढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी।

0: रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान।

0: अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
2: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7,000 किलोमीटर की छलांग। 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
2: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
3: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth: technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. A machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की, कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
4: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
5: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है,

0: अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
1: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
2: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के इतिहास।
1: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
4: एशियाई खेलों के आज आठवें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैंपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैंपेडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far, also calls for greater public participation in cleanliness drives ahead of Mahatma Gandhi's birth anniversary. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat, marking railway's shift towards cleaner energy. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles, bags bronze in decathlon, women's steeplechase and 200-meter events, and India retained Nona Gaprina Dashavili Trophy at Chess Olympia.

जापान में चल रहे 20वें एशियन गेम्स में हर रोज भारतीय एथलीट जिद, जुनून, जतन और जुझारूपन की ऐसी कहानी रच रहे हैं जिसकी हर तस्वीर, हर मोड़, हर किरदार अपना सा लगता है। तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है तो जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं लगती, पूरा भारत जश्न मनाता है। उनकी जतोजहद सिर्फ मैदान पर नहीं दिखती, उसकी तपिश हम सब तक पहुँचती है और जब मंजिल बस एक कदम दूर रह जाती है तो उसकी चूक की कसक हम सबको महसूस होती है। रविवार को भी ये सभी रंग, सभी जज्बात देखने को मिले। बॉक्सिंग रिंग में और हॉकी के मैदान पर जहां भारत का विजय रथ जारी रहा, तो वहीं एथलेटिक्स में भी अलग अलग इवेंट्स में हमारे एथलीट्स ने पदक जीते। स्क्वॉश में कहानी टू नियर येट टू फार की रही, तो वॉलीबॉल और आर्चरी से दिल खुश करने वाले समाचार मिले। कुल भारत के लिए आज 7 पदक आए हैं और सबका विश्लेषण लेकर आकाशवाणी की टीम हाजिर है। मैं दर्पण टीकिया, आइए जानते हैं 27 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों ने क्या क्या गुल खिलाए। शुरुआत करते हैं एथलेटिक्स से, जहां आज भारत ने 5 पदक जीते। नागोया का मिजुहू पार्क एथलेटिक स्टेडियम आज भी बरसात के कारण तर बतर रहा, सतह गीली थी और इस वजह से खिलाड़ियों को संयम, संतुलन और तकनीकी दक्षता का परिचय देना था। हेडलाइन एक्ट रही एनसी सोजन, जिन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप में भारत को रजत पदक दिलाया। एनसी की पहली जंप 6.49 मीटर की रही, जिसके बाद वो गोल्ड मेडल पोजिशन में लगा तार बनी रही। अपने 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने 6.53 मीटर की दूरी तय कर उम्मीदें और पुख्ता कर ली, लेकिन अपने आखिरी अटेम्प्ट में चीन की यिंगयिंग हुआंग ने 6.56 मीटर की कूद लगा उन्हें पीछे छोड़ा और एनसी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसी प्रतियोगिता में भारत की

0: शैली सिंह भी हिस्सा ले रही थी, जिनका बेस्ट अटेम्प्ट 6.42 मीटर का रहा और इसके चलते वो चौथे स्थान पर रही। दूसरा पदक आया पुरुषों की ऊंची कूद यानी हाई जंप से, जहां भारत के सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की कूद लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। फिर पुरुषों की डेकेथलॉन में तेजस्विन शंकर ने 1974 के बाद इंडिया को पहला पदक दिलाया एशियन गेम्स में। कल का दिन खत्म होने पर तेजस्विन नंबर 1 थे, लेकिन आज सरक कर तीसरे पायदान पर आ गए और अंततः ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने गले में पहना। स्टैमिना और स्फूर्ति का परिचय पारुल चौधरी ने भी दिया। 3000 मीटर की महिलाओं की स्टीपल चेज में तीसरा पायदान प्राप्त कर पारुल ने दिलाया कांस्य पदक। लेकिन शायद एक सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी भारत की हरिता भद्रा, जो महिलाओं के 200 मीटर में कांस्य पदक ले आई। 23.20 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर हरिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी दौड़ में उन्नति बोलेंड भी शिरकत कर रही थी और उन्हें छठा स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा एथलेटिक्स में कई और एथलीट्स ने अपने आप को पदक की दौड़ में बनाए रखा हुआ है। 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुषों में एस तमिलासरन फाइनल में पहुंच गए हैं, तो वहीं महिलाओं में विद्या रामराज भी फाइनल में शिरकत करते हुए नजर आएंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर और डेविड पट्टूराज भी फाइनल का रास्ता तय कर चुके हैं। पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ में मोहम्मद अफजल और कृष्णा कुमार भी फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में तमन्ना, स्नेहा, सुदेशना और अभिन्या की चौकड़ी ने पहला स्थान प्राप्त कर अपना सीजन बेस्ट दिया और फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। तो वहीं पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में अनिमेश खुजूर 5वें स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इस दौड़ में गीली सतह होने के बावजूद थाईलैंड के पुरीपोल बुनसोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया और केवल 19.88 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। वो बने स्वर्ण पदक विजेता। तीन पदक बॉक्सिंग रिंग में भी आज सुनिश्चित हुए और बताते हैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
1: एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए शानदार खबर है। भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 और पदक पक्के कर लिए हैं। अंकुश पंघाल, परवीन और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीत कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के अंकुश पंघाल ने ताजिकिस्तान के नेक्रुस सलीमोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। अंकुश ने पूरे मुकाबले में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए निर्णायकों को प्रभावित करते हुए जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अंकुश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमों को 5-0 से मात दी। परवीन ने मुकाबले के 3 राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। जीत के साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया। पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अत्थापोंग सेकटेप के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। नरेंद्र ने मुकाबला RSC यानी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम किया। इस जीत के साथ नरेंद्र भी सेमीफाइनल में पहुंच गए और भारत का तीसरा पदक भी सुनिश्चित कर लिया। हालांकि पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के सचिन सिवाच को निराशा हाथ लगी। सचिन को जापान के शुनसुके कितामोतो ने 5-0 से हराया। इसके साथ ही सचिन का एशियन गेम्स अभियान क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरह बॉक्सिंग में आज भारत ने 3 और पदक पक्के किए, अंकुश, परवीन, नरेंद्र। अब सेमीफाइनल में पदक का रंग बदलने के इरादे से ये तीनों खिलाड़ी रिंग में उतरेंगे।
0: Much like this, two medals were confirmed earlier in squash as well. Youngsters Abhay Singh and Anahat Singh had made it to the singles final and assured at least a silver medal for themselves yesterday. Today, they featured in their respective gold medal matches. First was Abhay Singh in the men's singles final, where he went down to Malaysia's Yan Yeo. Then, teenage prodigy Anahat Singh also suffered the same fate against a Malaysian opponent. Both these players missed out on not just the gold medal, but also on a direct qualification to the LA 2028 Olympics. However, at the end of the day, they wore the silver medal that they had won with pride, and it is just the beginning of something special in Indian squash. India have won its most medals in the shooting range in this year's Asian Games. What happened on Sunday? Vidushi Vats with the report.
2: Starting with the women's trap competition, Neeru Dhanda continues to be one of the standout performers for India. She's currently sitting at number 1 in the individual standings, hitting 48 out of 50 targets. There is also good news in the team competition. The Indian women's trap team has finished day 2 in second position, keeping themselves firmly in medal contention as the event moves towards its final stage.

0: Ashma Ahlawat is currently placed 16th individually. Moving to the men's trap event, Kainan Chennai made a brilliant start, producing a perfect opening round by hitting all 25 targets. He followed that with 22 in the next round and is currently placed 11th individually. Shapath Bhardwaj is currently in 22nd position, while the Indian men's team finished day one in 7th place in the team standings. And now, moving from trap to pistol. The Indian women have completed the precision qualification in the 25-meter pistol event. Esha Singh is leading the Indian challenge at this stage. She finished the precision qualification with 290 points, putting her in 6th position. Rahi Sarnobat and Manu Bhakar are next for India, both finishing on 287 points. Rahi is currently placed 15th, while Manu is at 16th. Importantly, this is not the end of the 25-meter pistol competition. There is still more action to come, with the Indian trio looking to build on these scores as the event progresses.
1: दूसरी तरफ हॉकी के मैदान में भारतीय टीम का विजय रथ जारी रहा। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। महिला टीम ने सिंगापुर के खिलाफ 7-0 से जीत पा इस बात को सुनिश्चित किया कि वो ग्रुप स्टेज पर अजय रहे और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अपना ग्रुप स्टेज कैंपेन अंत करे। अब सेमीफाइनल में सामने होने वाली है दक्षिण कोरिया। कुछ इसी तरह के संकेत आर्चरी रेंज से भी देखने को मिले हैं, विदुषी बताती हैं।
0: इन द मेंस रिकर्व टीम क्वार्टर फाइनल, धीरज, नीरज एंड यशदीप प्रोड्यूस्ड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अगेंस्ट चाइना, विनिंग 5-2 टू बुक देयर प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। द वुमेन्स रिकर्व टीम ऑफ अंकिता, कुमकुम एंड कीर्ति डिफीटेड चाइनीज ताइपी 6-0 इन देयर क्वार्टर फाइनल टू मार्च इनटू द लास्ट फोर। एंड इंडियाज मिक्स्ड रिकर्व टीम ऑल्सो मेड इट थ्रू। धीरज एंड कुमकुम हैव बीन क्लिनिकल थ्रू आउट द नॉकआउट स्टेज। दे बिगन विद 6-0 victory over the United Arab Emirates in the round of 16 and followed that up with another commanding 6-0 win over Vietnam in the quarterfinal, and now have a semi-final against Japan to look forward to. So in recurve, India has 3 teams through to the semi-finals. The men's team will face Iran, the women's team will take on China, and the mixed team will face Japan. These 3 recurve semi-finals are scheduled for October 2nd. But the good news from Indian archery does not stop there. The compound teams have also delivered across the board, with India reaching the semi-finals in the men's, women's and mixed team events. In the men's compound team quarter-final, Sahil, Ganesh and Kushal edged past Bhutan 235-232 in a closely fought contest. The women's compound team of Chikita, Jyoti and Pritika also booked their semi-final place, defeating Kazakhstan 233-230. And there was another impressive performance in the compound mixed team event by Chikita and Sahil, who first defeated Mongolia 161-46 in the round of 16 before overcoming Kazakhstan 159-154 in the quarter final. They are now through to the semi-finals, where they'll face Thailand. The compound men's and women's team will both face South Korea in the semi-finals. These 3 compound semi-finals are scheduled for September 30. All in all, it has been an absolutely fantastic day for Indian archery.
1: हालांकि बैडमिंटन कोर्ट से हताश करने वाली खबर है, मोहम्मद शाहिद आजमी से जानते हैं।
2: एशियाई खेलों में बैडमिंटन के लिहाज से भारत के लिए आज का दिन बेहद निराशाजनक रहा। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के क्वार्टर फाइनल में भारत के चारों मुकाबले हार के साथ समाप्त हुए और इसी के साथ बैडमिंटन में भारत की पदक की चुनौती भी खत्म हो गई। महिला एकल में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को चीन की विश्व नंबर 4 और ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई ने 3 गेम के मुकाबले में हराया। चेन यू फेई ने सिंधु को 21-11, 18-21, 21-10 से शिकस्त दी। करीब 75 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु ने दूसरा गेम जीतकर शानदार वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में चेन यू फेई ने बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। महिला एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने अपने एशियाई खेल पदार्पण पर जापान की 3 वर्ग विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी। उन्नति ने दूसरा गेम अपने नाम किया, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया की पोलिटेन और थीना मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार गई। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो को चीन की फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग ने कड़े मुकाबले में 14-21, 21-18, 18-21 से हराया। इस तरह एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत की चुनौती, एक कांस्य पदक जो पुरुष टीम वर्ग में मिला था, इसके साथ

0: समाप्त हो गई।
1: फिर चलते हैं वॉलीबॉल की ओर, जहां पर भारतीय टीम ने पुरजोर आगाज किया है। बताते हैं आलोक,
2: भारतीय टीम जो आखिरी बार 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पोडियम पर रही थी, ने पूल सी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कप्तान जोरम चार्ल्स के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में 58वीं रैंक वाली वियतनाम टीम को 3-0 से हराया। हालांकि पहला सेट बेहद करीबी रहा, लेकिन भारतीय टीम ने पहले सेट को 25-23 से जीता। दूसरे सेट में भारतीय टीम 25-21 से जीत करके मुकाबले में भारतीय टीम 2-0 से आगे होगी, और तीसरे सेट में भारतीय टीम 25-20 से जीत करके इस मुकाबले को 3-0 से अपने नाम किया। सर्बियाई कोच ड्रैगन महलोविक के मार्गदर्शन में खेल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल सुबह 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार हांगकांग से होगा।
1: वॉलीबॉल जैसा ही एक रोमांचक खेल है सेपेक टेक्रॉ, वहाँ भारतीय टीम का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
3: India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines. And the Philippines came away with another straight games victory. So India have now suffered two defeats in two Group B matches, losing both encounters 0-2. It has certainly been a challenging start for the Indian pair in the women's doubles. India will now look to their remaining group commitments as they aim to keep their campaign alive and finish strongly.
1: इसके बाद चलते हैं भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की ओर।
0: एशियाई खेलों में महिला वेट लिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर 9वें स्थान पर रही। हरजिंदर ने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच में उन्होंने 94 किलोग्राम का सफल प्रयास किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 110 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह हरजिंदर का कुल स्कोर 204 किलोग्राम रहा। उन्होंने प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की सोंग बुक होंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 273 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चीनी ताइपे की चेन वेन हुई ने कुल 232 किलोग्राम के साथ रजत, जबकि बहरीन की इंग्रिड गुएसो ने 229 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
1: फाइट स्पोर्ट कुराश में भारतीय खिलाड़ियों का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
3: इन द मेंस प्लस 90 किलोग्राम कैटेगरी यश कुमार चौहान लॉस्ट हिज राउंड ऑफ 16 बाउट 0-10-2 तजाकिस्तान्स मिरमामादोव, व्हाइल विशाल डिड मेक इट थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स इन द सेम कैटेगरी बट हिज कैंपेन एंडेड देयर आफ्टर अ 0-5 लॉस टू थाईलैंड्स ईयर ऑन। इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम कैटेगरी संगीता वॉज बीटन 0-10 बाय द फिलीपींस क्वेलिनो इन द राउंड ऑफ 32। Bharati also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Tahereh. So, four Indian Kurash athletes in action today and all four have now been eliminated.
1: Moving on to fencing.
3: India's women's sabre team saw their Asian Games campaign come to an end in the quarterfinals. The Indian team, featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin J.S. and Shruti Joshi, began the team event with a convincing 45-23 victory over Indonesia in the round of 16. They then put up a strong fight in the quarterfinals but went down 35-45 to Uzbekistan in the last eight. So, India's women's sabre team finishes its campaign at the quarterfinal stage, just missing out on a place in the semi-finals.
1: अन्य खेलों का लबोलुबाब लेकर आलोक।
2: व्यक्तिगत घुड़सवारी ड्रेसेज इवेंट में हृदय विपुल छेरा ने 72.680 और उनके साथी जयसूद ने 71.490 का स्कोर किया। वो क्रमशः 8वें और 9वें पायदान पर रहे। दोनों राइडर्स क्वालिफिकेशन राउंड तक से फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाए। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 के एशियाई गेमों में भारत के लिए अनुषा अग्रवाल ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं बात करते हैं सर्फिंग की। पहली बार एशियाई खेल में शामिल किए गए सर्फिंग से आज भारत के लिए मिक्स रिजल्ट रहा। मेंस शॉर्ट बोर्ड में भारत के किशोर कुमार अबारसु राउंड में 9.33 स्कोर के साथ पहले स्थान पर क्वालिफाई किया। राउंड टू में उन्हें बाय मिला। तीसरे राउंड में उनका मुकाबला चीन के वेंग सॉन्ग से होगा। शिवराज बाबू ने 7.03 का स्कोर किया और राउंड टू में उनका मुकाबला था आज ईरान के दाऊद खादिर के साथ। उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है 8.96 के मुकाबले 3.60 के स्कोर के साथ। तीसरे राउंड में उनका अगला मुकाबला फिलीपींस से होगा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं वुमेन्स शॉर्ट बोर्ड में। कामली प्रकाश और शांति गोयन ने राउंड टू का मुकाबला जीता, लेकिन राउंड तीन में वो अपना मुकाबला हार गए। इस प्रकार एशियन गेम्स से उनका सफर खत्म हो गया है। दोनों भारतीय खिलाड़ी 9वें पायदान पर रहे।
1: इसके बाद भारत 4 गोल्ड, 16 सिल्वर और

0: 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल 37 मेडल लेकर 12वें स्थान पर है। चीन पहले, जापान दूसरे तो दक्षिण कोरिया तीसरे पर। अब बात करते हैं कल की। सोमवार 28 सितंबर को भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होने वाली है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आगाज करने वाली है अपने कैंपेन का। क्वार्टर फाइनल में सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती और बारिश के चलते टीम को अभ्यास करने का ज्यादा मौका मिला नहीं है। उसके बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं।
1: इस बारिश है वो तो हम रीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि वी आर अ बंच ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ऐसे सब हर्डल्स आते रहेंगे और हमें मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज गोइंग टू बी। प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू कम एंड प्ले द मैच। यहां का विकेट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं सेट हो सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा पहले कि अडैप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग तो होगा ही, डिफिकल्ट होगा, हर एक टीम के लिए होगा।
0: हॉकी के मैदान पर भारतीय पुरुष टीम खेलने वाली है अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला बांग्लादेश के विरुद्ध। सेमीफाइनल से पहले मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला है जरूरी। तो वहीं बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले हैं कपिल और प्रिया घंगस अपनी अपनी क्वार्टर फाइनल बाउट में। इसके साथ ही ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पर भी नजरें होंगी। देन इन द आर्चरी रेंज इंडिविजुअल कॉम्पिटिशंस विल स्टार्ट। वी विल हैव आवर आईज ऑन मेन एंड वुमेन फ्रॉम बोथ रिकर्व एंड कंपाउंड आर्चरी। इन एथलेटिक्स गुलवीर सिंह एंड यूनुस शाह विल बी फाइटिंग फॉर अ मेडल इन द 1500 मीटर मेंस रेस। मीनवाइल पारुल चौधरी हु वन अ गोल्ड मेडल इन द 5000 मीटर इन द प्रीवियस एशियन गेम्स विल बी कम्पीटिंग टुमारो। इन द मेंस लॉन्ग जंप फाइनल मुरली श्रीशंकर एंड डेविड पट्टूराज विल बी फीचरिंग। बाधा दौड़ में 400 मीटर में पुरुषों में तमिला सरन तो महिलाओं में विद्या रामराज फाइनल खेलेंगी। भारत की मिक्स्ड रिले टीम भी 4x100 मीटर की दौड़ में फाइनल खेलते हुए नजर आएंगी। सीमा विल ऑल्सो फीचर इन द वुमेन्स डिस्कस थ्रो फाइनल। तो वहीं पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में सूबेदार अविनाश साबले शिरकत करते हुए दिखेंगे। इन शूटिंग आईज विल बी ऑन द ट्रायो ऑफ ईशा सिंह, मनु भाकर एंड राही सरनोबत, एज वेल एज द मेन्स एंड द वुमेन्स टीम इन द ट्रैप कॉम्पिटिशन। इसके अलावा सर्फिंग में किशोर कुमार और शिवराज बाबू पर होगी नजर। वॉलीबॉल में पुरुषों के सामने होगी हांगकांग, तो सेपक तकराव डबल्स में महिलाओं के सामने जापान। और कल एक बार फिर इसी समय आकाशवाणी की टीम हाजिर होगी भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का लबोलुबाब लेकर। फिलहाल मुझे दर्पण टिकिया को एडिटर विशाल कुमार और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
3: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ 20ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10:20 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਡਿਤ ਅਜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਨ ਰਾਗ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਠੁਮਰੀ ਤੋਰੀ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰੀਆ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਤਹਿਤ ਪੰਡਿਤ ਅਜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਨ ਰਾਗ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਠੁਮਰੀ ਤੋਰੀ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ, ਬਾਅਦ 11:05 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ। ਬਸ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਿਸ਼ਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
3: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा

0: संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
1: गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष सिंगल्स और स्क्वैश और महिला सिंगल्स स्क्वैश में रजत पदक जीतने पर अभय सिंह और अनाहत सिंह को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभय सिंह की यह उपलब्धि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम, कौशल और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने अनाहत सिंह के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने महिला लंबी कूद में रजत पदक जीतने पर NC सोजन को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके दमदार और उत्साहपूर्ण प्रदर्शन से देश को खुशी मिली है। श्री मोदी ने महिला 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर हरिता भद्रा को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हरिता भद्रा का पहला एशियाई खेल है और उन्होंने आत्मविश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ लगाकर पदक अपने नाम किया। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रेंडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर देश को कांस्य पदक दिलाया। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली 88 गेंद में 139 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके एक दिवसीय क्रिकेट का 55वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 86वां शतक है। शुभमन गिल ने भी 110 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी। जी आई नू आखते हैं, वेलकम करते हैं अपने सारे सुनने वाले का। प्रोग्राम चल रहा जी सौगात, तो मैं थोड़ा आज दोस्त अमित प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ जी। जिसना कि तुम जानते हो, इस प्रोग्राम में तुम अपनी पसंद के पंजाबी गीत सुनते हो। सानू सिर्फ तुम कॉल करना है 0181 23 41 171 और असी थोड़ा गलबात करांगे, थोड़े विचार सुनांगे और थोड़ी पसंद का गीत प्ले करांगे। तुसी अपने विचार अपने फरमाइश सानू वट्सएप राही भिजवा सकते हो। साडा नंबर है 94-655-36-077। प्रोग्राम का अगला गीत सुनने तो पहला अगली आप कॉलर ने गल करने तो पहला सवेरे 4 बजे तक प्रसारित होने वाले जिहड़े प्रोग्राम ने आप हल्का जिहा उहदे बारे जानकारी लैने जी। तुहाडा मेरा साथ प्रोग्राम सुगात दे राही सवेरे 1 बजे तक रहेगा, यानी कि फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और बहुत सारी गल्लां, बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत सवेरे 1 बजे तक जारी रहेंगे। 1 बजे सुनोगे पंजाबी मेलोडीज गीत, यह सवेरे 2 बजे तक जारी रहेगा। 2 बजे सुन सकोगे तुसी पंजाबी युगल गीतां दा प्रोग्राम, पंजाबी ड्यूट म्यूजिक। असी दसना चाहवांगे कि पंजाबी मेलोडियस गीत ते पंजाबी ड्यूट म्यूजिक विच असी ओही गीत प्ले करदे आ जिन्हां दी फरमाइश सानू साडे श्रोता वक्खो वक्ख प्रोग्रामां विच करदे ने। सवेरे 3 बजे तड़के अमृत वेला हुंदा है, प्रभु भगती दा प्रभु सिमरन दा समां हुंदा है। सरवण करांगे गुरबाणी विचार, 3:30 ते सरवण करांगे कुछ भजन कुछ भगती गीत। 4 बजे तड़के सवेरे असीं तुहानूं श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलांगे जिथों तुसीं शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे। ऐसी सवेरे 4 बजे तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामां की रूपरेखा तो प्रोग्राम का जारीकरण करते हुए प्रोग्राम अगे वधाते हुए आप हुण गलबात करांगे प्रोग्राम के पहले कॉलर के नाल। देखते हैं जी कौन ने, कि शहर तो आए ने, कि गीत सुनना चाहते हैं। हैलो,
1: हाँ जी।

नजफगढ़ जय विहार तो मैसेज भेज रहे ने शाहरुख फारूक शबनम ते शहनाज इन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम सौगात विच। मंडी हरजी राम मलोट तो सानू मैसेज भेज रहे नथुराम शर्मा ललित शर्मा इंदराज शर्मा सुरेश शर्मा कहिंदे कोई भी गीत सुना तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश तो सानू मैसेज भेज रहे ने यसमीन यशु निरंजन सिंह मौसम सिंह इन्हों का बहुत बहुत स्वागत है जी। आओ सुनते हैं प्रोग्राम की अगली पेशकश।

0: हेलो,
1: हेलो
0: स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच। कौन बोले ने? किड़ी जगह तो
1: जी, सत श्री
0: सत
1: अकाल।
0: श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, अपना नाम दसो, किड़ी जगह तो बोल रहे हो?
1: प्रीतम, पिंड लद्दू वाला, जिला फरीदकोट।
0: वाह जी, प्रीतम जी तुहाडा स्वागत है तुहाडे अपने प्रोग्राम सुगात विच। की हाल चाल है?
1: बहुत वधिया जी, तुहाडा साडे लद्दू वाले बहुत बहुत स्वागत है।
0: हाँ वाह जी वाह, किन्ना प्यार मिलता। देखो असीं थां थां घूम के आने हैं बैठे बैठे, है कि नहीं? जिथे कॉल
1: हाँ
0: लग
1: जी, हाँ
0: गई
1: जी,
0: उत्थे ते सानूं स्वागत मिल जाता है।
1: हाँ बिल्कुल जी। वेखो बड़े बुरे प्रोग्राम तो ट्राई कर रहे हैं, कॉल बड़े बड़ी लगती है, पता नहीं चेंज क्यों, खाली रंगा आउंदियां
0: नहीं
1: रहंदियां ने।
0: नहीं नहीं नहीं मैं सबनों यही बार बार बेनती कर रहा, कॉलां
1: हाँ जी,
0: बहुत सारियां आ रही ने और जो भी कॉल चक्कन जाने हैं अपने आप कोई भी कॉल आ सकती है। असी चूज नहीं कर सकते भी आ चकनी है नहीं चकनी, जो भी फोन
1: नहीं
0: चकेंगे
1: नहीं
0: कोई भी
1: तुहाडा
0: कॉल।
1: कोई गुनाह नहीं, सानू पता है वो, पता
0: हाँ,
1: नहीं
0: इस करके तुसी
1: चेंज
0: बस ट्राई करी
1: चेंज
0: जो
1: फिर हुंदा है।
0: इदा ना जी, ट्राई करी जो जिन्हें कॉल लगी है उन्होंने पिछे हट जाना, मैं तो रश कट जाएगा, थोड़ी कॉल जरूर लगेगी, बस ट्राई कर दे रहा।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: अच्छा कि गीत सुनवाइए तुम्हें?
1: अज तुसी कोई सुरिंदर कौर दा बना दो, हरचरण गरेवाल दा
0: ठीक
1: कोई।
0: है जी, आपां गीत सुनते हैं धरती नूं कली करा दे। कॉल करने
1: ठीक
0: लिए
1: है जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, थोड़ा गलबात करके चंगा लग्या, उम्मीद है तुसी दोबारा भी कॉल करोगे। प्रोग्राम चल रहा है सुगात।

0: प्रोग्राम चल रहा जी सुगात ते तुसी ट्यून किया है आकाशवाणी डीटीएच दी पंजाब प्रसारण सेवा का जलंधर केंद्र। इस गीत के दौरान ही सानू एक बड़ा प्यारा मैसेज भेजा है गुरमीत सिंह मीता होना ने साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो जी एन आखते हैं मीता साहब बहुत बहुत तुहाडा स्वागत है जी तुहाडे अपने प्रोग्राम सुगात विच। तुसी किसी खास गीत की फरमाइश नहीं की पर तुहाडी हाजिरी लगी है जी मैसेज भेजने लई बहुत बहुत शुक्रिया। तो हुण असीं गलबात करांगे प्रोग्राम के अगले कॉलर के नाल देखते हैं जी कौन ने किहड़े शहर तो आए ने और किहड़ा गीत सुनना चाहते ने। हैलो
1: हैलो
0: हाँ जी कौन बोले ने जी किहड़ी जगह तो।
1: सर मैं जयवीर सिंह बोल रहा हूँ खन्ने तो।
0: बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम सुगात विच की हाल चाल ने।
1: वधिया जी तुसी सुनाओ जी।
0: जयवीर जी की काम कर करदे हो
1: जी। मैं प्लस टू तो ग्रेजुएशन करके मैं यूनिवर्सिटी च पढ़दा ही सी जी।
0: ओ वाह जी वाह बहुत खुशी हुई तुहाडे नाल गलबात करके।
1: हाँ जी
0: ते रेडियो सुनने दा मौका मिल जांदा दिने या राती।
1: हाँ जी
0: रेडियो सुनदे हो साडे प्रोग्राम सुनदे हो।
1: हाँ जी
0: वाह जी वाह बहुत खुशी हुई कि यूथ भी जरा वो रेडियो सुन रहा है और इन्हें शौक न सुन रहा है। मैं बहुत प्राउड फील हो रहा है बहुत।

प्रोग्राम चल रहा जी स्वागत है। तुम सुन रहे हो मनमोहन वारिस तकाया हुआ एक पंजाबी गीत। फटाफट सन कॉल करो जी 0181 3342 171 और व्हाट्सएप मैसेज वास्ते 94655 36077।

0: कर मन मेरे सत व्यवहार। इस शब्द का गायन किया सी भाई बख्शीश सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। बाबा नानक देव जी ने उदासियां दौरान हाजियां दी शंका निवृत्ति इन्हां लफ्ज़ां च कीती कि शुभ अमलां दे सिट्टे वजों ही किसे दे जीवन नूं जाणिया जांदा है। उस अनुसार ही वड्डे अते छोटे दा निर्णा हुंदा है। हवाला इस तरह मिलता है, पुछन फूल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमानोई, बाबा आखे हाजियां सुब अमला बाजो दोनों रोई। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुभ कर्मन की परिभाषा ही बहु अर्थी करते हुए शुभ कर्मन की जाचना अकाल पुरख पासों की थी। सुनदे हां प्रोफेसर बलविंदर पाल सिंह होरां पासों वार्ता, शुभ कर्मन ते कबहो न टरो।
1: शुभ अशुभ का अंतर करन दे लई बुद्धि की वरतों करनी हुंदी है। तर्कशीलता अते विवेकशीलता दे आधार ते बहुत लोग परंपरा विचले शुभ अशुभ नूं छड़ चुके हन। बहुत सारे दुबदा विच पए रहिंदे हन अते कुछ ऐसे भी हन जो मनो तां विज्ञानक सोच अते गुरबाणी दी विवेक अनुसार निश्चा दृढ़ रखदे हन, पर समाजिक लोकाचारी दे करके जां धार्मिक कर्म कांड दे करके अविवेकी क्रियाचार भी करी जांदे हन। शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो एक जाचना है, एक निश्चा ते दृढ़ता है जो अरदास रूप विच परम पिता परमात्मा पासों मंग कीती गई है। इत्थे शुभ कर्मन विच कर्म कांड वाले शुभ अशुभ कारज नहीं आउंदे, सगो मानवता दे कल्याण, धर्म दे जयकार अते मनुखी हक्कां दी राखी वाले शुभ कर्मन दी गल आखी गई है। दशमेश पिता ने अपने स्वईये देह शिवा बर मोहे एह शुभ कर्मन ते कमहू ना टरो विच परम पिता अकाल पुरख पासों यह वर मंगया है कि वह चंगे मानववादी कमां तों कदे भी पिछे ना हटन। इस शुभ कर्मन विच गरीबां दी पीड़ा दूर करन दे लई, जालम बादशाहां नाल उन्हां नूं जुल्म करन तों रोकन दे लई संघर्ष करना, ऊच नीच दे भेदभाव नूं अमली तौर ते दूर करन लई संगठन मजबूत करना, लोकां दी अग्ञानता दा अणउचित लाभ कमा के विलासी जीवन भोगण वाले रजवाड़े अते लोभियां दा विरोध करना शामिल हन। ता प्रसाद सवैये सरावग शुद्ध समूह सिधान के स्पष्ट करदे हन कि गुरु जी धर्मां दे कर्म कांड दे महात्म नूं किसी भी तरह उच्चा नहीं गिणदे, भाव वह शुभ कर्मां विच नहीं रखदे। सच्चे दिलों प्रभु दे नाम नाल जुड़न, कुदरत दे बंदियां नाल प्रेम करन अते सब नूं समान दृष्टि नाल देखन तों वड्डा शुभ कर्म होर कोई नहीं है। ना डरों अरस्यों जब जाए लरों, निश्चय कर अपनी जीत करों, भाव बेईमान लोकां जालमां झूठ दे हमायतियां अते गरीबां उत्ते वधीकी करन वालियां नाल संघर्ष तों मैं डरां ना अते अपने दृढ़ निश्चय करके मैं सच नाल खड़ा हाँ, मेरी ही जित होवेगी। अरदास विच विश्वास दी ए वड्डी निशानी है। अर सिख हो अपने ही मन कौ, एह लालच हो गुण तौ उचरो दा प्रसंग शुभ कर्मन दा आधार सिरजदा है। सिख होण दा भरोसा अपने अंदर ही भरपूर हो जावे। सिख होण दी सिख्या दूजिआं नूं देण लई असीं बहुत काले पै जांदे हाँ। प्रभु दे गुणां नूं गायन करन दी मनशा यह होवे कि असी इन्हां गुणां नूं अपने अंदर धारण कर सकीए। गुणां तों बिना शुभ कर्मन दी सोझी होनी संभव नहीं है। बाबा शेख फरीद इसे संदर्भ विच आप सवारें मैं मिलें सुख होए दी जुगत दसदे हन। इसे नूं गुरु नानक देव साहब मन जीतै जग जीत दे रूप विच स्थापित करदे हन। रोज़ाना दी अरदास विच विवेक दान, विसाहा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान मंगदे होए सिक्खी दान ते रहत दान दे पसार स्पष्ट किते गए हन। जीवन विच संत उबारन अते दुष्टा नाल मुकाबला करन दी सोच लै के चले दशमेश पिता ने योद्धे तैयार किते जिन्हां ने हमेशा शुभ कर्मन दा पल्ला नहीं छड्या। जब आव की औध निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरों दी जाचना तोड़ निभाउंदी है। सिखी सिदक केसा स्वासा संग निभे दी अरदास करनी भी शुभ कर्मन नाल जुड़ी हुई है।

देह सेवा बरमोहे एह सुब करमन ते कब हो न टरो। ए स्वये दा गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अनुसार उही जीव धन है जो मुख तो परमात्मा दा नाम उचारदा है ते मन विचों विकारां नाल जूझ के मन अते जगत ते जित प्राप्त करन दी लालसा रखदा है। तन जियो ते को जग मैं मुखते हर चित मैं जुद विचार है। सरवण करदे हां डॉक्टर अलंकार सिंह होरां पासों इस सवैये दा गायन।

तन जियो तेह को जग में मुखते हर चित में जुद विचार है। इस सवैये दा गायन कीता सी डॉक्टर अलंकार सिंह होरां।

कलयुग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बे।

कलयुग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग

बस रैन बास जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत ताम स्यों अपर परंपर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाहीं और काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्ब में अर्जुन गुर भगत के हेत पाए रेओ मिल राम स्यों अंत न पावत देव सवे मुन इंद्र महाशिव जो करी हुन वेद ब्रंच विचार रेओ हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत शिष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग

0: नित पुराण बाची है, वेद ब्रह्मा मुख गावै, अजय चवर सिर टुलै नाम परमेश्वर लियो, गुर अर्जुन सिर सतर आप परमेश्वर दियो, मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पह गयो, हर बंश जगत जस संचरियो, सो कवन कहे श्री गुरु मोयो।
1: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो, हर

एहन सुसहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय हुए सिफत।

जिस का तन मन धन सब तिस का सोई सुगड़ सुजानी।

तेरे तेन तेल नहीं कीमत जानी रहाओ अमृत नाम निर्मोलक हीर गोर दीनो मंतानी डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूरन होए त्रिपतानी ओए जो बीच हम तुम कश होते तेन की बात बिलानी अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक बखानी प्रगटियो ज्योत सहज सुख सोब बाजे अनहत बानी कहो नानक निहचल कर बादेओ गोर कियो बंदानी।